0: ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ 5:59 ਤੇ 55 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ 6:05 ਤੇ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा की विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा की विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्रवाई कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं।

एपीसोड नंबर 1332। 8:30 बजे का समा रहेगा प्रोग्राम पांच पाणियां दे गीत दा। 8:45 ते रिले करांगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन। समाचार संध्या ते 9 बजे रिले करांगे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन। न्यूज एट 9 आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। रिले करांगे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण, जिस तहत तुसी सुनोगे 9:15 ते प्रोग्राम आज के आपके लिए। 9:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम छाया गीत। 10 बजे दा समा रहेगा प्रोग्राम आज के फनकार। 10:30 बजे चलेगा प्रोग्राम ढलती जाए रात। 11 बजे साडी अज दी चल रही सभा दी समाप्ति हो जाएगी। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਤੇ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वाले दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: ਅੱਜ ਹੈ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ 1832 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਓਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: ਕੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ
3: ਉਹ ਵੀ ਐਪ ਤੋਂ
4: ਵਾਹ ਫਸਿਆ ਅਣਜਾਣ ਐਪਸ ਤੋਂ ਬਚੋ
5: RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
6: ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
7: आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, मिती 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार शाम 5:30 बजे तुसी सुनोगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम अखर बोल देने। विशा रहेगा पैसा धन अते दौलत।
8: ओके

जी प्रोग्राम चल रहा है सजरी सवेर ते स्टूडियो दी घड़ी दे अनुसार समा 7:23 ते 17 सैकेंड दा ते मैं सुखजीत लैके हाज़र हाँ। अज दियां अखबारी सुरखियां ते अखबारी सुरखियां दी शुरुआत करांगे अंतरराष्ट्रीय सुरखी तो जो कि लगी है लंडन तो। एंडी बर्नहम यूके दे नवे प्रधानमंत्री बने। थोड़ा जिहा विस्तार च खबर नूं लईए तां लिखिआ है एंडी बर्नहम अधिकारित तौर ते यूके दे नवे प्रधानमंत्री बन गए हन। उन्हां 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच के साबका प्रधानमंत्री की स्टामर की जगह लई। जी अगली अंतरराष्ट्रीय सुरखी खेडां नूं लैके न्यूयॉर्क तो विश्व चैंपियन बने स्पेन नूं मिलेगी 480 करोड़ रुपए की इनामी राशि। थोड़ा जा विस्तार च खबर नूं लईए तां लिखिआ कि स्पेन ने एतवार देर रात फाइनल च अर्जेंटीना नूं 1-0 नाल हरा के 2026 फीफा विश्व कप का खिताब अपने नां कर लिया। स्पेन नूं विश्व कप जित्तण लई इनामी राशि च 50 मिलियन अमरीकी डॉलर मिले हन, जिस नूं जेकर भारतीय रुपये च बदलिया जाए तो लगभग 480 करोड़ पे बनदा है। मुख सफ़ियां की गल करिए पंजाबी ट्रिब्यून के मुख सफ़े की सुरखी नवी दिल्ली तो मानसून इजलास का हंगामा खेस आगाज। विरोधी धिर ने पेपर लीक से चढ़ावा चोरी मामले से सरकार को घेरिया। रौले रपे दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जजां की गिनती वधाने वाला बिल पेश। इसे ही खबर को अजीत अखबार ने भी अपनी सुरखी बनाया है। सुरखी कुछ इस तरह है, संसद के मानसून इजलास का हंगामेदार शुरुआत। विरोधी धिर वालों पेपर लीक से चढ़ावा चोरी मामलों लैके हंगामा। नाल ही खबर है जी जजां दी गिनती वधाउण संबंधी लोक सभा च बिल पेश। थोड़ा जिहा खबर नूं विस्तार च लईए तां लिखिआ है उधर हंगामे दौरान ही लोक सभा च कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट च जजां दी गिनती वधाउण वाला बिल पेश कीता है। सरकार दा कहना है कि जजां दी गिनती वधाउणा सुप्रीम कोर्ट च बकाया मामलों नाल निजठण दे सब तों जरूरी ते कारगर उपावां विचों इक है।

0: जी अज दा प्रोग्राम दा अचीवर्स लैके मैं हाजर हां सुखजीत ते मेरे वल्लों सारे ही श्रोतियां नूं प्यार भरी नमस्कार। ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहाडी मुलाकात करवावांगे सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल दी विद्यार्थन दीहर कौर कौड़ा दे नाल, जिन्हां ने CBSE जोनल लॉन टेनिस मुकाबलियां विचों चांदी दा तगमा जित्तिया ते राष्ट्रीय मुकाबलियां लई अपनी जगह बनाई है। जी दीहर कौर कौड़ा जी, स्वागत है तुहाडा अज दे इस प्रोग्राम दे विच।
1: थैंक यू
0: जी। खेडां दे खेत्र विच दीहर तुसी मल्लां मारियां ने, देश दा नाम रोशन कीता है, पर इस खेत्र च पेरेंट्स खास करके कुड़ी नूं भेजण तों डरदे ने, ते इह वी कहा जांदा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, हना कहा जांदा ना। पर तुहाडे वर्गियां बच्चियां ने इस सोच नूं बदल के रख दिता है ते अगे बदल भी रही ने। तुसी मैनूं इह दसो कि इस खेत्र च आउण लई तुहानूं किस तों प्रेरणा मिली है?
1: मुझे इस खेल में प्रेरणा शुरुआती तौर पे मेरे मम्मी पापा और मेरे कोच से मिली है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। मेरी मम्मा बैडमिंटन में बहुत अच्छे हैं एंड मेरे पापा क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे आगे स्पोर्ट्स में बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा दी, जिससे मैं आज इधर हूँ।
0: जी, पेरेंट्स की प्रेरणा के नाल तुसी इत्थे तक पहुंचे हो।
1: हाँ जी।
0: वैसे दीहर इदा भी हुंदा ना कि कुड़ी होण दे नाते इस खेत्र दे विच आउणा बहुत ही चुनौतीपूर्ण हुंदा है, तुहानूं इस दे विच किन्नियां चुनौतियां दा सामना करना पिया?
1: शुरुआत में थोड़े से चैलेंजेस को मतलब करना पड़ा था फेस, बट उनसे मैंने ये भी सीखा कि मतलब बैलेंस, एक रूटीन बनानी भी मैंने सीखी, और थोड़ी सी मुझे स्टडीज में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, बट अब मैंने फेस करना मैंने उसको सीखी है और मैंने एक पंचुअलिटी की तरह एक रूटीन बना ली है, जिससे अब मैं ज्यादा चुनौतियां फेस नहीं कर रही और पढ़ाई भी मेरी अच्छी जा रही है एंड स्पोर्ट्स भी अच्छी है।
0: स्पोर्ट्स भी अच्छी है। जो जो चुनौतियां तुहाडे सामने आईया है ना,
1: हाँ जी,
0: जो विद्यार्थी जा स्टूडेंट होर इस खेत्र दे विच आउणा चाहुंदे ने,
1: हाँ जी,
0: इदां दियां चुनौतियां ना आउण, इस दे लई तुसी उन्हां नूं किस तरह दे टिप्स देने चाहोगे?
1: उनको जिनको खेलना उनकी स्टडी को ठीक रखना पड़ेगा पहले, उनको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी पढ़ाई में भी, और साथ में उनको पंक्चुअलिटी भी रखनी पड़ेगी, जिससे वो पढ़ाई को और सारी गेम्स को इकट्ठे खेल सके, और अपनी हेल्थ को ध्यान रखना पड़ेगा।
0: बिल्कुल जी। दीहर तुसी जेड़ा एहे खेडां दा सफर है, एक कदों तो शुरू कीता है?
1: मैं 2020 में स्टार्ट करा था, मुझे अब 5-6 साल होने वाले हैं। एंड स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट अब बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि ये मैंने सुखविंदर सर मेरे कोच हैं, मैं लाइफ टेनिस अकेडमी में बठिंडा में खेलती हूँ, उनसे मैंने ये गेम सीखी है एंड वो बहुत अच्छा खिलाते हैं एंड ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, सबको इसमें पार्ट लेना चाहिए।
0: बिल्कुल। दीहर, स्टडी ते गेम दोनों चीजां ही साडी जिंदगी दे लई बहुत जरूरी हुंदियां ने, हैना?
1: हां जी।
0: ते तुसी स्टडी दे विच भी बहुत वधिया हो, ते खेडां दे विच ता तुसी नाम रोशन कर ही दित्ता है पंजाब दा।
1: हां जी।
0: खेड ते पढ़ाई, इन्हां दोनों नूं फिर बैलेंस किवें करदे हो?
1: इसके लिए एक मैंने रूटीन बना के रखी हुई है, वो एक बैलेंस रूटीन है, उसको फॉलो करके मैं पढ़ाई और अपनी खेल को दोनों को मैनेज कर लेती हूँ, जिससे मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ एंड टेनिस में भी अच्छी हूँ।
0: चलो मान लो किसी ने इस गेम दे विच आना, तो तुम दसोगे तुसी भी वो सुबह किन्ने बजे उठन?
1: मैं सुबह 5:30 उठती हूँ एंड 6 से 7 बजे मैं टेनिस प्रैक्टिस पे जाती हूँ एंड उसके बाद 7 बजे स्कूल चल जाती हूँ, उसके बाद ट्यूशन एंड शाम को फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी चली जाती हूँ टेनिस की।
0: ठीक है, पूरा दिन का तुसी अपना जो टाइम टेबल है

0: रहे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक

0: जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
3: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय

0: नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, NHPC के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

0: हाल ही में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton Tournament beginning.

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज संसद भवन विच राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ एनडीए संसदीय दल की मीटिंग नूं संबोधन करनगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों के दौरे के दूजे पड़ा से नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंच गए हैं। वह राष्ट्रपति गोडाना सिलजानवस्का दावकोवा नाल दुवल्ली गलबात करनगे। यूक्रेन की ओडेसा बंदरगाह नेड़े एक व्यापारक समुद्री जहाज से हुए हमले में चार भारतीयों की मौत से एक गंभीर रूप से जख्मी। भारत ने हमले की निंदा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वालों ईरान को सख्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी तो बाद अमरीकी फौज ने अज ईरान विरुद्ध नवे हमले किए हैं। पी वी सिंधु अज तो शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट में भारत की अगवाई करेंगे। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ एनडीए संसदीय दल की हफ्तावारी रणनीति मीटिंग मंगल मिलन अज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग संबोधन करेंगे। यह मीटिंग रवायती तौर पर संसद के समागम दौरान मंगल

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस अंतराल पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था धमाल चार। इस फिल्म से संजू राठौड़ की आवाज से रश्मि विराग और संजू राठौड़ ने इस गीत को लिखा। तनिष्क बागची और संजू राठौड़ का संगीत।

0: और आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं भूल भुलैया 3 इस फिल्म से। आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में ये गीत है। आदित्य रिखारी ने इसे लिखा है और संगीत है लीजो जॉर्ज का।
1: मेरे साथ

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पति पत्नी और वो, इस फिल्म वो दो। पति पत्नी और वो दो इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे बादशाह कृष मोंदल, किशोर मोंदल और इप्सिता की आवाजों में। इस गीत को लिखा है बादशाह और कुणाल वर्मा ने, बादशाह हितेन और देव सदाना का संगीत।

यारियां दो इस फिल्म का गीत अब सुनिए। यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर की आवाजों में इस गीत को लिखा खलीफ और यो यो सिंह ने, संगीत खलीफ और यो यो सिंह का।

ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर है चित्रलोक कार्यक्रम लेकर। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये पारंपरिक गीत जुग जुग जियो। इस फिल्म से कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजें हैं और इस गीत को संगीत से सजाया है कविता सेठ और कनिष्क सेठ ने।

और लीजिए अब सुनिए तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: थैंक गॉड फिल्म का गीत सुनिए, योहानी, जुबिन नौटियाल और सूर्य रघुनाथन की आवाजों में, रश्मि विराग की रचना, तनिष्क बागची और चमत्कार संगीत का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।
1: यहाँ

0: पागल
1: दोस्तों, आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को, जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई। तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
2: जब पार्टीशन में हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया। लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने, जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज्म लिखी, उस नज्म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स। और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा, जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है, या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ दो अपने बख्शी साहब फैंस के लिए।
1: जरूर।
2: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई।

0: कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई। इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई। रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई। दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
1: क्या बात है,
0: ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा
1: जी जी
0: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है।
1: जी, आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगता था। वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले। इसी बरस आई हिमालय की गोद में।

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रही थी। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

0: आनंदबख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंदबख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल है, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
0: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
1: बख्शी साहब का एक गाना था एक फिल्म में, जहाँ पर विलियन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हरमा हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया,
0: जी
1: डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए, उनका उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई, और जो राजकोट साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वो वहां यूज किया, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए,
0: क्या बात है। मतलब
1: तो वो
0: देखिए,
1: वहां से
0: इतिहास
1: आई।
0: से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे
1: हाँ
0: एक
1: जी,
0: मॉडर्न गाने में बदल दिया।
1: यस यस,
0: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं कि भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
1: हाँ, वो बख्श साहब और जो

0: चल रही थी गाने की, तो काफी वक्त निकल गया। मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्शी साहब और डायरेक्टर साहब जीवन प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तक तो मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, क्योंकि अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। तो बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे, तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि रुको रुको, बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया है। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, और उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ, आधी रात को, कहाँ, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: ये वहां से वो बात निकली। एक
1: अच्छा
0: गाना है अपना, एक बार सुभाष घई साहब आए थे घर पे,
1: जी
0: उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि मैं नई फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने निकल चले गए बख्शी साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्शी साहब ने सुभाष जी घई साहब को कहा कि मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्शी साहब नहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, क्योंकि शायद फादर आ रहे थे बाहर गाँव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए। उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्शी साहब बैठे थे बाजू में और दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रास्ते में कहीं बख्शी साहब ने गाड़ी रोक दी। मैंने बोला रुक रुक रुक, कुछ लिखना है मुझे। और उन्हें कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरे हम सफर का, चौराहा पर इस मोड़ पर कहीं तू मेरे
1: किसी
0: हम
1: राह
0: सफर।
1: पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर।
0: हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरे हम सफर। तो वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी कि गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे हम सफर।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त हैं, जिनके रिकॉर्ड की शॉप थी, अभी भी है स्वीट। तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले, और वहां पर एक स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल। स्कूल के स्कूल से आगे आ रहे थे एसवी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी। तो वहीं पर बख्शी साहब ने वापस गाड़ी रोक दी, बोला रुक रुक रुक, मुझे कुछ लिखना है। उन्होंने कुछ अपने उनके पास एक, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 5x5 सीजर पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइनें, मुखड़े बंतरे जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर है तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। और 3 4 6 महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्शी साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल के लिए, कि चलते को नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली 2 हफ्ते में। वो चले गए फिल्म देखने, और जब वो गाना आया तो बख्शी साहब ने बोला याद है तेरे को, हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था, तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने। तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी, और मैंने ये गाना लिखा था तब कि रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए।
1: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
0: हजारों घटनाएं हैं, दो घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्शी साहब, 68 64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब जब फूलगले रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड। तो लिखते भी थे 10 15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना, काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्शी डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे, 1 2 बजे आते थे, 3 कभी 3 बजे आते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो, लाइक जैसे लाइक माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती है हाथ से, यू नो, हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके। तो वो हमेशा रात को आके ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माई ब्रदर टू माई सिस्टर, लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था। जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर नहीं करते थे वो छोटा कोई लोरी सुनाना या कुछ। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा फिर जब आते थे, अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे, मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था, उनकी
1: क्या
0: उनकी
1: बात है, क्या बात।
0: लोरियों का। दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था, तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने, तो मेरे डैडी ने कहा कि तेको पता है इस अंडे का भाव क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा 50 पैसे 25 पैसे जो भी होगा, 1 रुपया होगा, आई डोंट नो। तो

0: कि जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा चार टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले। तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माई फादर वॉज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर ऑफ करियर इन द बिगनिंग।
1: बिल्कुल,
0: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में। तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना,
1: क्या बात है,
0: भले वो एक अंडा ही हो।
1: क्या बात है,
0: इसी बात
1: बात
0: मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया
1: जी।
0: और वो मेरे डैडी की पसंद की नहीं थी, तो मेरे डैडी ने कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वव नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने प्रेताप में गाना लिखा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आप लव स्टोरी में कुमार गौरव के कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा लगा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी है, अच्छी गाने लिखे हैं, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे हो कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है।
1: जी
0: तो मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है, काम में और शौक में फर्क होता है, वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता, अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है।
1: क्या बात है। अच्छा अब मुझे बताइए कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर?
0: गाने तो बहुत है, हजार है, जैसे कि क्या होता है हर गाना आपको एक जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको एक कोई गाना अच्छा लगता है।
1: मैं समझ
0: जैसे मुझे याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल से चला गया था, यू नो विद अ गर्ल, कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था, तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था। तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा क्या हो गया तेरे को, 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, कुछ लफड़ा उड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ? अच्छा मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत चाहेंगे हम अगर तू संग है, क्योंकि काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं, तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए, तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: क्या बात,
0: ऐसा ही एक गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी में काम आ सकता है, और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं लोग, कोई साथ नहीं देता। तो बख्शी साहब ने ये कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा, दुनिया अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे।
1: क्या बात,
0: लेकिन पहले खुद को याद करो, किसी और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो। तो ये लाइन आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है, मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए।
1: जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब की याद का दिन, और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया।

0: मुश्किल में है कौन किसी का समझो इस राज को, मुश्किल में है कौन किसी का।
1: आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
2: सुनो कहो
3: कहा
2: सुना
3: कुछ हुआ क्या

फिल्मी दुनिया के तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया, और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा, और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी

फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन का ये गाना।

बख्शी साहब 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने हजारों गाने, और उन गानों का गाने सुनने वाली जनता से अभूतपूर्व लगाव।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार आनंद बख्शी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने,
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जी, अज दा प्रोग्राम गीत पटारा लै के हाजिर हाँ मैं करमजीत कौर ते एक बार फिर सारे ही श्रोतियां नूं प्यार भरी नमस्कार।

आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तों, मिति 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार शाम 5:30 बजे तुसी सुनोगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम अखर बोलदे ने। विशा रहेगा पैसा, धन अते दौलत।

भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आकाशवाणी FM बठिंडा दे सूझवान ने सरुत्यो दिन मंगलवार मिति 21 जुलाई 2026 सिलसिला श्रीमद भगवद गीता सनातन सच दी खोज यथार्थ रूप दे वेच आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा आप जी दे सर्वन ली आप जी दी खिदमत दे वेच लैके हाजर होवेगा। प्रसारण समा रहेगा दोस्तों शाम 5:30 बजे। प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग ममता अरोड़ा जी ते गुरदीप कौर गिल जी।

और अब पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक को संबोधित किया। संसद में मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने के बारे में जानकारी मांगी है। नई दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। सरकार ने बताया है कि इस वर्ष जून तक 55 करोड़ 49 लाख से अधिक उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। 2025-2026 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेन देन हुए, जिनका कुल मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए रहा। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी तीस्ता 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों की को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजानोवस्का दाउकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के

ओडेसा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए और 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के जम्मू में कल तेज बारिश के कारण एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। पिछले 3 दिन में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर अब बबीता त्रिपाठी की वाणी आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स यानी बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें, आपके लिए एक सवाल और भी बहुत कुछ, ढेर सारा एंटरटेनमेंट, टोटल धमाल इस शो में होने वाला है। हमारे साथ, हमारे यानी आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक पर बबीता त्रिपाठी के साथ। और कुल मिलाकर बात ये कि शो शुरू हो चुका है बीटी विद बीटी, तो आप सबको कहीं जाना नहीं है, ऐसे ही सुनते रहना है, एंजॉय करते रहना है, अपने लाइफ को मस्त बनाना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।

बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है, यानी बॉलीवुड चेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। तो आप सब एकदम कमाल धमाल और बवाल मचाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स तो होंगी, साथ में आपके लिए एक सवाल भी होगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। आपको बस कुछ नहीं करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और आपको जवाब मिल जाएगा और सवाल पूछा जाएगा लगभग 11:30 बजे, तो आधी बातों को भी आप सुनेंगे तो चलेगा। तो आपको व्हाट्सएप मैसेज ही तो करना है एकदम फ्री, और क्या पता बॉलीवुड सरताज बन जाएं आप, और बॉलीवुड सरताज बनेंगे तो हमसे बात करने का मौका मिलेगा, स्वयं हम आपको कॉल लगाएंगे और बात करेंगे। तो एक काम करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इंजॉय करते रहिए, साथ में व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए भी तैयार हो जाइए। अगर आप बॉलीवुड सरताज नहीं भी बने तो नाम तो आपका शामिल होना एकदम गारंटीड है। तो एक काम करते हैं, गाना चलाते हैं, फिलहाल लौट कर आते हैं और जानते हैं आखिर बॉक्स ऑफिस का हाल क्या है।

फिलहाल तो अजय देवगन ने क्या जबरदस्त कमाल धमाल कर रखा है। अजय देवगन क्या इतनी बड़ी स्टार कास्ट है और धमाल मचा रही है। बात कर रही हूँ धमाल स्टोर की। अब दूसरा वीकेंड भी हो चुका है और उसमें क्या कलेक्शन किया है जानना नहीं चाहेंगे, हम भी बताने के लिए ही बैठे हुए जी। तो चलिए देखते हैं दूसरे वीकेंड पर कुछ खास हो पाया नहीं हो पाया। वैसे तो ऑलरेडी अच्छा कमाल कर रही है शो, बढ़िया ही चल रहे हैं इसके, लेकिन हाँ जब दूसरा सप्ताह शुरू होता है तब देखने वाली बात होती है और खास तौर पर मंडे को देखने वाली बात होती है, क्योंकि छुट्टियों के दिन में लोग कई बार टाइम पास करने के लिए भी मूवी देखने चले जाते हैं। तो आखिर मंडे टेस्ट में ये मूवी पास हुई या नहीं देखते हैं। वैसे तो अच्छा ही चल रही है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अब तक 2.69 करोड़ का लगभग कलेक्शन इस मूवी ने दूसरे सोमवार को किया। और रही बात टोटल कलेक्शन की, तो 127.19 करोड़ हो चुके हैं इंद्र कुमार की द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में। अजय देवगन, अरशद वारसी और भी बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं और इन सब का जो जलवा है वो बरकरार है इस

0: और रही बात 10वें दिन की यानी मंडे की, तो जैसा मैंने बताया 12.75 करोड़ का कलेक्शन किया। अब आगे क्या रहेगा इस मूवी का हाल आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप भी बता दें कि टोटल सॉरी ये धमाल 4 का जो मुकाबला है ना, वो हॉलीवुड फिल्म दी ओडिसी से है। उसका भी परफॉर्मेंस उसकी भी परफॉर्मेंस जबरदस्त है, और कल इसने 21.90 करोड़ का कलेक्शन किया, और टोटल कलेक्शन 67.95 करोड़ है, जो कि बेहतरीन कहीं कहा जा सकता है। दूसरे देश में आकर इतना जबरदस्त प्रदर्शन कम ही फिल्मों का होता है। अल्फा और वेलकम टू द जंगल की बात करें तो अभी ये दोनों की दोनों मूवीज बहुत खास कमाल नहीं कर रही है, एवरेज एवरेज थोड़ा थोड़ा चल रही है।
1: Thank you.

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

रानी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल चल रहा है, बॉलीवुड की खबरें चल रही हैं, और अभी तो जनादेश की बात करते हैं। किसी पॉलिटिकल ड्रामा की बात कर रही हूँ भाई, कोई जनादेश नहीं, मैं कोई चुनाव में नहीं खड़े होने वाली। मैं आपको बता दूं कि जनादेश प्रकाश झा की एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है जो आने वाली है, और इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं तुषार कपूर। और वो जब 25 साल करियर के अपने इस इंडस्ट्री में पूरे कर चुके हैं तो काफी उत्साहित हैं, और साथ में इस मूवी को लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये उनकी पहली पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है। और हमारे पास भी तो हम कह सकते हैं कि तुषार कपूर को ऐसी मूवी में, सीरियस टाइप की मूवी में देखना भी हमारे लिए अलग ही अनुभव होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम तो उनको गोलमाल धमाल जैसी जो कॉमेडी मूवीज हैं उनमें देखते हुए आए हैं, और ऐसी उनकी कुछ पहचान या छाप हमारे मस्तिष्क पर पहले ही पड़ चुकी है। अब हम जब उनको इस तरह की मूवीज में देखें

ये जहां पर पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया जाएगा, जैसे प्रकाश झा की मूवीज जिस तरह से जानी जाती हैं, उनकी जबरदस्त मूवीज हैं, राजनीति है, आरक्षण है, सत्याग्रह है, और इस तरह की जो मूवीज हैं, और आश्रम जैसी सुपर हिट वेब सीरीज भी वो बना चुके हैं। तो ऐसे में तुषार कपूर इस रोल में या इस तरह की मूवी में किस तरह का रोल निभाएंगे और किस तरह दिखाई देंगे, ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात होगी। हम तो उनको गोलमाल जैसी मूवीज में देखते हैं और ऐसे ही एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो वैसे ऐसी मूवीज में भी वो आना जारी रखेंगे। आपको तो पता है ना, गोलमाल 5 में भी तुषार कपूर साइन किए जा चुके हैं और उसको उसकी शूटिंग भी मार्च में शुरू हो चुकी है, इसी मार्च में। अब आगे कब आएगी बताएंगे, जब भी आएगी उसके बारे में नई अपडेट। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि सारी की सारी स्टारकास्ट गोलमाल 5 में भी नजर आने वाली है, अजय।

बताएंगे जब भी आएगी उसके बारे में नई अपडेट। लेकिन हाँ आपको बता दूं कि सारी की सारी स्टार कास्ट गोलमाल 5 में भी नजर आने वाली है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, श्रेयस कुमार, खेमू और शर्मन जोशी जैसे बड़े बड़े सितारे चमकेंगे इस मूवी में। फिलहाल तो जनादेश की बारी, देखते हैं जनादेश में आखिर तुषार कपूर क्या करने वाले हैं। मेरे लिए एक्साइटमेंट।

दुनिया से बढ़कर कौन दबंग भाई हो सकता है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग दबंग जब मूवी आई थी ना तो कुछ इसी तरह का इंप्रेशन पड़ा था, और उसके बाद दबंग की जो सीरीज आई उसने इस पर ठप्पा लगा दिया कि भाई इस तरह की मूवीज में अगर कोई फिट बैठता है ना तो वो है हमारे सल्लू मियाँ। फिलहाल आपको बता दूं कि सलमान खान की जो मूवी है मातृभूमि उसकी क्या अपडेट है, उसका नया पोस्टर जारी हो गया है, कब रिलीज होगी ये लगभग तय है, डेट नहीं तय है लेकिन हाँ ये तय हो गया है कि इसी साल ये मूवी रिलीज हो जाएगी। और जो पोस्टर है उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है, और हाँ इस पर लिखा गया है, एक सैनिक का वादा, एक परिवार की ताकत, एक राष्ट्र का गौरव। और इस पोस्टर के हिसाब से ही हम कह सकते हैं कि ये मूवी इसी साल रिलीज होने वाली है, अगले साल का वेट बिल्कुल नहीं करने वाली है। और इस मूवी की बात करें तो बैटल ऑफ गलवान ऐसा रखा गया था शुरुआत में इसका नाम, लेकिन अब इसे मातृभूमि कर दिया गया है, और ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में ऐतिहासिक झड़प हुई थी उस पर ये मूवी बनी हुई है। इसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। और रही बात सलमान खान के रोल की, तो मातृभूमि में सलमान खान मुख्य भूमिका में है, और 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। और हाँ पांडे जी का एक गाना सुना देते हैं, मतलब ये जो गाना है दबंग का उसको सुनते हैं और लौट कर आते हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आप सबसे एक सवाल पूछने का लगभग समय आने वाला है, तो ध्यान से सुनिए और फिलहाल पांडे जी को सुनिए। सुनते रहिए बीटी विद बीटी।

वैसे ऐसी भूमिकाएं, चल हट जा रे न पंगा ले। तो जब ऐसी भूमिकाओं में किसी मेल कैरेक्टर को आप देखते हैं तो किसको देखते हैं बॉलीवुड में? हो जाएगा नहीं तो दंगा रे। सोचे सोचे सोचे कौन है ऐसा जो इस तरह के कैरेक्टर्स में फिट बैठता है हमारे सलू

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: वो सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी रेनबो, और वो टाइम आ गया है जब आपसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा और उस सवाल का जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और अगर बॉलीवुड सरताज आप बने तो कॉल मिलाएंगे हम आपको, रैंडमली कोई नंबर चूज करेंगे, आपको कॉल मिलाएंगे, आपसे बातें करेंगे और सही जवाब आपसे डायरेक्टली ऑन एयर जानेंगे। रही बात आपके नाम की, तो आप सबका काम व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपने मैसेज किया है तो आप सबके मैसेजेस पढ़े जाएंगे, आप सबके नाम लिए जाएंगे, आपके शहर का नाम भी लिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर व्हाट्सएप मैसेज करना है जो बिल्कुल फ्री है। और सवाल तो एकदम ही आसान है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर मेरी बातों को आपने ध्यान से सुन लिया ना तो आंसर ढूंढने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा। जैसे कि आप आकाशवाणी रेनबो सुनते हैं उसके बाद कहीं नहीं जाते हैं। तो फिलहाल आपको बता दूं कि आज का सवाल क्या है। तो आज की क्विज है कि अपकमिंग जनादेश जो मूवी है प्रकाश झा की, उसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है। ऑलरेडी बता चुकी हूं, अब आपकी बारी। व्हाट्सएप मैसेज करना है, लेकिन हाँ ध्यान रहे, सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद भेज देना है इस नंबर पर जिसका नंबर का नाम है 9868107070, 9868107070। और हाँ, मेरा नाम बबिता त्रिपाठी, शो का नाम बॉलीवुड ट्रेल्स, टोटल मिला के बीजी विद बीटी। एंजॉय कर रहे हैं आप।

0: कल यानी 20 तारीख को रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और निर्देशक एटली की बात करें तो क्या जबरदस्त तारीफ की है भाई। वैसे तो लगभग सभी ने तारीफ की है इसके एकदम भव्य ट्रेलर की, लेकिन एटली जब कुछ कहते हैं तो भाई निर्देशक हैं, ऐसे में उनकी बात अलग ही मायने रखती है। और उन्होंने रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं, और उन्होंने कहा है कि जो इसका एक्साइटमेंट है इस मूवी का, वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जवान जैसी मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया है और वो मुरीद हो गए हैं इस ट्रेलर को देखकर। उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पर कि नमित मल्होत्रा निर्देशक, जो निर्माता है, और निर्देशक नितेश तिवारी हैं, और फिल्म की स्टार कास्ट है, सब जबरदस्त हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि विजन, विजुअल्स और कलाकारों के अभिनय की जबरदस्त तारीफ है, क्योंकि वो भव्य है, जादुई है, उनका जो अनुभव है वो देखकर ऐसा ही कुछ है। हर एक पर्सन की उन्होंने अलग-अलग तारीफ की है, पूरा फ्रेम उन्होंने भव्य, नया और जादुई महसूस होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब ऐसे में जो एक्साइटमेंट है वो बढ़नी तय है रामायण की। और एक फिल्म और है जिसके ट्रेलर का हम सबको इंतजार है, और उसकी रिलीज यानी ट्रेलर की रिलीज डेट कह सकते हैं, या फिर उसका जो लॉन्च है वो भी काफी भव्य होने वाला है। वो कौन सी फिल्म
1: जिस
0: है
1: दिन तेरे को
0: जानेंगे
1: देखो
0: तो
1: ना
0: बताएंगे
1: सांसे
0: थोड़ी
1: भी ले
0: देर में,
1: सको
0: आपको
1: ना
0: जानना ही
1: तेरी
0: होगा
1: तेरे
0: क्योंकि उस
1: लागी जो
0: मूवी की भी
1: कभी
0: काफी
1: तेरी
0: चर्चा
1: आगी
0: है।
1: तेरी
0: थोड़ी देर में
1: लागी
0: लौट कर
1: जो
0: आती हूँ।
1: कभी

तो जी, अभी रामायण की बात की, क्या ग्रैंड उसका लॉन्च किया गया है उसका ट्रेलर। और साथ में अब टॉक्सिक की बात कर लेते हैं, जिसके ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च की काफी चर्चा है। और इस बात की भी चर्चा है कि इन दोनों ही बड़ी मूवीज में है हमारे यश, और उनको देखने के लिए हम सब एकदम लालायित हैं, क्योंकि हम सब के वो फेवरेट हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि जो टॉक्सिक मूवी है उसकी रिलीज डेट तो 26 अगस्त है, लेकिन उससे पहले ट्रेलर ऑब्वियसली लॉन्च होगा और वो बड़ा ग्रैंड होने वाला है। बेंगलुरु के एक ग्रैंड इवेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा, और कहा जा रहा है कि 8 अगस्त को इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाएगा। और टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, इसके लिए हम सब की जो जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे इसकी जो अपडेट्स हैं वो और ज्यादा आ रही हैं। फिलहाल देखेंगे, ट्रेलर देखकर हम सब की क्या राय बनती है। वैसे एक बात तो फिक्स है कि जब यश होते हैं किसी मूवी में तो वो मूवी काफी यशस्वी बन जाती है ना? तो फिलहाल देखते हैं इस मूवी का क्या हाल होता है।

आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ उन्हीं ऑन आकाशवाणी रेडियो दिल से दिल तक। एक बार फिर से सवाल दोहरा देती हूँ और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, लौट कराती हूँ, आप सबके नाम शामिल करती हूँ जिन्होंने जवाब दिए हैं सही या गलत। फिलहाल आपको बता दूं, मैंने पूछा था कि अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका में कौन है, आपको बस यही बताना है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद आंसर लिखना है और भेज देना है 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करके। एक बार फिर से सुन लीजिए 9868107070।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड रेस ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

है आप सबके नामों की जिन्होंने जवाब दिया है आज के क्विज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप दिल्ली से लिख रहे हैं और इनका ही मैसेज सबसे पहले दिखा, लेकिन आपको बता दूं उससे पहले भी बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं जिनको हम शुरू से लेते हैं ताकि कोई नाम मिस ना हो। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से लिख रहे हैं और सूरज का मैसेज भी दिखा है, लेकिन हाँ सबसे पहले अपना नाम लिखने को कहा था। कई बार मिस हो जाता है आपका नाम सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम नहीं लिखा, फिर आंसर लंबा लिख दिया। आंसर लिखना है सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम, बस इतनी सी बात, और आंसर भेज देना है, दैट्स इट। सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं और तरुण कोहली सूरजकुंड से लिख रहे हैं, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, इरशाद अशरफी शहर का नाम है इनके, और इरशाद का नाम इरशाद है या अशरफी है या क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ ये शायद इन्होंने राजस्थान से मैसेज किया है। और हैरी सिंधु बठिंडा से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज अनूप साहू का है, उसके बाद सुखलाला बाला का है वेस्ट बंगाल से, और नेक्स्ट मैसेज दिख रहा है मुझे कोमल और पूजा का दिल्ली से सही जवाब के साथ। ये सब सही जवाब के साथ आंसर्स आए हैं, इम्तियाज सही जवाब के साथ मैसेजेस आए हैं, और इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर से लिख रहे हैं, और निकिता कहाँ से लिख रहे हैं पुणे से लिख रही हैं, नीतीश कुमार रेशम नगर झारखंड से, और विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से, संजय खत्री कोल्हापुर से, और तुषार ये नेक्स्ट मैसेज अपना नाम सबसे पहले लिखते तो अच्छा लगता ना, ढूंढना पड़ रहा है मुझे, निधि प्रयागराज से, और रणवीर मोनिश ये कहीं से लिख रहे हैं अभी ढूंढने का टाइम नहीं है, कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिख रही हैं, मीना चौधरी शास्त्री नगर मेरठ से, दानिश कतौली से, और तवसीफ अहमद का मैसेज श्रीनगर से आया है, और मिसेस धर्म भाटिया जी का मैसेज रोहतक से आया है, राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, ललित का मैसेज आया है पंजाब से, राजीव कुमार का मेरठ से, और टुडेज क्वेश्चन इज आंसर इज, भाई क्वेश्चन तो मैंने ही पूछा था। चलिए ठीक है, अपना नाम भी लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता, नाम नहीं लिखा हुआ है। सीमा मेरठ से लिख रही हैं और ये भाई थैंक यू सो मच, तारीफ में आपका नाम गुम हो गया। औरंगाबाद बिहार से महेंद्र प्रताप सिंह का मैसेज, ऋषि कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, अजय कुमार का छत्तीसगढ़ से, और नेक्स्ट मैसेज किसका है भाई, अपना नाम सबसे पहले आपने भी नहीं लिखा है उमेश, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपने लिखा है खयाला से, और आप में से कौन बनेगा आज का बॉलीवुड सरताज, ढूंढ कर लाती हूँ और आपको कॉल मिलाती हूँ नेटवर्क।

0: तो चलिए, इस वक्त हम सबको इंतजार रहता है कि आखिर आज का बॉलीवुड सरताज कौन है, और बॉलीवुड सरताज हमारे बीच ही है। वो अपना नाम स्वयं बताएंगी और कहां से बोल रही हैं, क्या करती हैं, सब कुछ जानने के लिए अगर आप हैं बेताब तो लीजिए, हाजिर है आज की बॉलीवुड सरताज। हेलो,
1: जी मैम, नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैम। मैं मीना चौधरी फ्रॉम मेरठ से बात कर रही हूँ। धन्यवाद।
0: मेरठ से मीना चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर। मीना, क्या करती हैं
1: जी
0: आप?
1: मैम, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करती हूँ।
0: वाह, उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करती हैं और इस वक्त आकाशवाणी रेनबो सुन रही हैं, कैसे? सब कुछ शांति है?
1: जी, और सब कुछ बहुत अच्छा है। और वर्तमान में मैं जनपद बागपत में पोस्टेड हूँ। मैं तो गाड़ी
0: बागपत।
1: चला के जा रहे थे, और
0: हाँ
1: इस
0: हाँ
1: समय आपका चैनल हम गाड़ी के माध्यम से सुन रहे थे।
0: हमें कितना अच्छा लगता है कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आप पुलिस में अपनी ड्यूटी कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, घर पे हैं, कहीं से भी आप हमें सुन सकते हैं और हर वर्ग के लोग सुनते हैं, बहुत मजा आता है। तो मीना, पहले तो आपको बॉलीवुड सरताज बनने की ढेर सारी बधाई करते हैं, क्योंकि आपने आंसर सही दिया है। एक बार ऑन एयर भी आप बता दीजिए, मैंने पूछा था अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका कौन निभा रहे हैं?
1: अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका में तुषार कपूर है। जी
0: तुषार कपूर, ग्रेट। इसी के साथ आप बनती है बॉलीवुड सरताज, क्लैपिंग आपके लिए,
1: थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद।
0: कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कैसा लग रहा है मीना जी?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी आपसे पहली बार बातचीत हो रही है मैम। सबसे पहले मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी, आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा।
0: सो स्वीट, थैंक यू सो मच। बस यही सुनना था मुझे। तो मीना जी, आप दिल्ली पुलिस में हैं, आम नागरिकों को कुछ कहना चाहेंगी?
1: आम नागरिकों को मैम, बस मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैं अभी फिलहाल ड्राइव करते समय आपसे बात कर रही हूँ, बस कोई भी गाड़ी चलाते समय फोन पे बातचीत ना करें, रेडियो जरूर सुन सकते हैं।
0: हाँ, रेडियो सुन सकते हैं, बट गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात नहीं करनी है। बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है, और थैंक यू सो मच आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से दिल से दिल तक आप जुड़िए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। ठीक है
1: जी
0: मीना
1: मैम,
0: जी,
1: नमस्कार।
0: ओके, बाय।
1: नमस्कार मैम, थैंक यू।
0: तो ये थी मीना आज की बॉलीवुड सरताज, और आप भी बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल

फिलहाल तो समय यही कह रहा है कि बॉलीवुड ट्रेन से लेना होगा। बबिता त्रिपाठी का विदा यानी बीटी विद बीटी का फिलहाल यहाँ पर समाप्त किया जाता है। एक गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन हाँ लौट कर आऊंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बस एक घंटे बाद। एक घंटे बाद लेकर आऊंगी हमारे एक्सपर्ट को रेनबो हेल्पलाइन में, और सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है और ऐसे में अपनी स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है हेयर फॉल को रोकना, जो हम सबके साथ कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। और भी बहुत सारी हेयर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, अगर आप उन सब का निवारण चाहते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आकाशवाणी रेनबो सुनते रहना है। यहाँ हर टॉपिक पर बातचीत होती है और आज इसी टॉपिक पर बात होने वाली है, स्किन एंड हेयर केयर इन मॉनसून। और एक्सपर्ट इज नन अदर देन डॉक्टर भारती तनेजा, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ेंगी 1 बजे, तो बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा। लेकर आऊंगी भारती तनेजा को और आप सबके सवालों का जवाब बिल्कुल मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। आप चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके, ये आपकी मर्जी। फिलहाल मुझे यानी बबिता त्रिपाठी को 1 घंटे के लिए दीजिए विदा, लौट कर आती हूँ, और उससे पहले इंजॉय कीजिए वेस्टर्न म्यूजिक, प्ले 8 कूल उत्कर्ष के साथ। बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन चोडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आवाज़ दी दुनिया दे प्यारे दोस्तों, मिति 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार शाम 5:30 बजे तुसी सुनोगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम अखर बोलदे ने। विशा रहेगा पैसा, धन अते दौलत।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग ममता अरोड़ा जी ते गुरदीप कौर गिल जी।

0: घर बड़े किस्मत वाले होते हैं, वो घर बड़े किस्मत वाले होते हैं जिस घर के बुजुर्ग हंसते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल साडे बुजुर्ग साडे घरां दी रौनक, जे खुश है ता रब दा आशीर्वाद भी फिर साडे नाल है। प्रोग्राम छावा ठंडिया ने वोड़ दिया लेके एक बार फिर हाजिर है दीपा छाबड़ा।
1: ते मेरे वालों सारे ही श्रोतियां नु प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं दोस्तों तुसी सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे ते सुकून दे विच होंगे। ते मैं ता अपना सुकून लभ लिया जी, बिल्कुल मेरा सुकून है साडे बुजुर्गां दे वेड़े दे विच आके उना दे कोल बह के उना नाल मिठिया मिठिया गल्ला करके मेनू ता बहुत ही सुकून मिलता है। ते आकाशवाणी FM बठिंडा ने एक प्रोग्राम सारिया लई शुरू किया छावां ठंडिया ने बोल दिया, ताकि जेड़ा सुकून दीपा ले रही है ना, वो सुकून साडे स्रोते भी ले सकन, मिठिया मिठिया गल्लां साडे बुजुर्गां दिया सुन सकन, उना तो प्यार ले सकन, उना दी कहानी सुन सकन। ते आज ए कहानी ए छां किन्ना दी है ए बिल्कुल जी तुहाडे नाल सांझा करांगे। स्वागत करदे आं गुरविंदर कौर जी दा, जिन्हां कोल अज असी आए आं उना दिया गल्लां सुनन, मिठिया मिठिया उना दे जिंदगी दे तजर्बे सुनन। ते गुरविंदर जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू जी, सत श्री अकाल सारिया नू
1: जी। तुहानू भी साडे सारिया वालों साडे स्रोतियां वालों प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। ते गुरविंदर जी, सब तो पहला तुहाडे सेहत बारे पुछूंगी, तुहाडी सेहत ठीक रहिंदी है?
2: गुड
1: जी, बहुत वधिया। ते ए जेड़ा तुसी गुड किया भी तुहाडी सेहत ठीक है, ते इस सेहत नू ठीक रखन वास्ते की करदे हो?
2: मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूं। मैं ये सोच दिया भी जे नेगेटिव सोचांगे तो हेल्थ होर खराब होएगी। जेड़ी हेल्थ खराब हो चुकी है ओनू होर खराब करन नालों पॉजिटिव सोच के ओनू बेटर किया जा सकता है।
1: जी जी जी, बहुत वधिया। ते गुरविंदर जी, जदों असीं अपने बुजुर्गां कोल जाने आ ना, सब तो पहला उन्हां नू उन्हां दे बचपन दे विच लैके जाने आ, ते अज तुहानू भी लैके चलदे आ तुहाडे बचपन दे विच। जी, ते दसो अपने बचपन बारे, तुहाडा बचपन किदां दा सी, तुहाडा जन्म किथे होया?
2: मैं जी बठिंडे दी हां, मेरे पेरेंट्स बठिंडे दे हां, वो बिजनेस है उन्हां दा
1: जी।
2: ते बचपन मेरा बहुत वधिया गुजरिया। मैं ग्रेजुएशन कीती हुई है, मतलब फर्स्ट जिहड़ा 12th तक मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दी स्टूडेंट सी। उस तो बाद मैं SSD गर्ल्स कॉलेज च ग्रेजुएशन कीती। उस तो बाद फिर मेरा मन सी भी चलो मैं कुछ अगे भी करा, फिर मैं पंजाबी च मतलब ज्ञानी, उस टाइम ज्ञानी होंदी सी साडे टाइम, फिर मैं ज्ञानी बड़े अच्छे मार्क्स च मिलाप अपनी कीती, पास आउट कीती। मेरे स्कूल लाइफ च मैनू मेरे कोल स्पोर्ट्स सी, NCC सी, जिस च मैं बहुत ज्यादा कंपटीशन NCC दे JET वगैरह दे सारे एग्जाम मैं क्लियर कीते, फर्स्ट एड वगैरह सब कुछ मैं कीते। मैंने शौक बहुत सी
1: जी,
2: बट मतलब बाद विच फिर सब कुछ चेंज हो जाता है लाइफ च ना। पर मेरा बचपन बहुत अच्छा बीतिया
1: जी जी
2: असी बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छे ग्रुप से साडे घर दे आस पास जो भी सी ते असी बहुत खेलते होंगे सी उत्ते, अपनी आउटडोर गेम्स बहुत ज्यादा इंजॉय कीतिया।
1: वाह जी वाह।
2: जिवें जिवें ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧਦੀ ਗਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ
1: ਜੀ,
2: ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ।
1: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ?
2: ਅਸੀਂ ਸਕੀਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ।
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
2: ਅਸੀਂ ਲੁਕ

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1-4-5-5-5 ते कॉल करो।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
3: आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, मिती 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार शाम 5:30 बजे तुसी सुनोगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम अखर बोलदे ने। विशा रहेगा पैसा, धन अते दौलत।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हूं तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ एनडीए ने आज संसद भवन के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम विखे अपनी संसदीय पार्टी की मीटिंग की। इस हुण मंगल मिनल वजो जाने जाता है। मीटिंग दौरान एनडीए के सहयोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने से वधाई दिंदिया एक मता पास किया। पत्रकारों नाल गलबात करदिया संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग दौरान श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक विच शामिल लोगों खिलाफ सख्त कार्रवाई करन अते देश के नौजवानों के हितों की रक्षा करन दे सरकार दे संकल्प नूं दोहराया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: पंजाब के जल स्रोत मंत्री बिरेंद्र कुमार गोयल ने कल नूरपुर बेदी ब्लॉक के पिंडा विच सिंचाई लई पानी मुहैया करवाउण दी योजना की शुरुआत पिंड छज्जा तो की थी। इस योजना उत्ते 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मौके पिंड के वसनीकों संबोधन करदिया उन्होंने कहा कि नूरपुर बेदी इलाके के पिंड हुण तक खेतीबाड़ी लई सिंचाई वास्ते पानी दी सहूलतां तो वांझे रहे ने। इस समस्या के हल वास्ते चार संभावित विकल्पां दा अध्ययन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस तहत 8 तो 14 पिंडां दे समूह बना के छोटियां छोटियां लिफ्ट सिंचाई योजनावां विकसित कीतियां जा रहियां ने तां जो किसानां दी लोड़ मुताबक पानी दी सप्लाई यकीनी बनाई जा सके। इस दे नाल ही चोहां ते नदियां ते बन बना के मीह दे पानी नूं भंडार करन ते खेतां तक इस नूं पहुंचाउण दी योजना भी तैयार की गई है। मंत्री ने दस्सिया कि 102 पिंडां नूं सिंचाई सहूलतां मुहैया करवाउण लई सतलुज दरिया आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनावां ते सवा नदी उत्ते बनाए जाण वाले बन नूं इकट्ठे लागू करना सब तों ठीक रहेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जलंधर जोनल इकाई ने पठानकोट के पिंड पट्टियां विच होए करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन घोटाले और गैर कानूनी रेत माइनिंग मामले विच कार्रवाई करदिया बीते दिन 16 वख-वख थावां ते छापेमारी करके 1,75,00,000 की नकदी और 91,34,000 रुपए के बैंक बैलेंस जब्त किए ने। जांच विच खुलासा होया कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड उस समय का वधीक डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह सी। जिक्रयोग है कि कुलदीप सिंह उसकी सेवा मुक्ति तो सिर्फ 4 दिन पहला एक राज मंत्री की सिफारिश से पेंडू विकास बारे एडीसी नियुक्त किया गया। इस दौरान उसने पिंड विच सरकारी जमीन निजी व्यक्तियों नूं तब्दील करन दा एक विवादपूर्ण हुक्म पास किया। सूत्रां मुताबक सरकारी इजाजत तो बिना गैर कानूनी माइनिंग की जा रही थी जिस नाल सरकारी खजाने नूं काफी नुकसान हो रहा है। संबंधित फर्मा की भी जांच चल रही है। जिक्रयोग है कि पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणियां जारी कीतियां ने जिस विच कहा गया कि सरहदी खेतरां च गैर कानूनी माइनिंग ISI वालों संचालित नशा तस्करां दहशतगर्दां ते देश विरोधी तत्तां दा समर्थन करती है। अदालत ने सरकार नूं इस नूं रोकण दे निर्देश दिते होए ने। अमृतसर देहाती पुलिस ने नशा तस्करां गैंगस्टरां अते सरहद पारों चल रहे गैर कानूनी नैटवर्कां खिलाफ ऑपरेशन प्रहार तहत जिले च इक्को समय छापेमारी करके हुण तक करीब 40 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार कीता। अमृतसर बॉर्डर रेंज के DIG हरमनबीर सिंह गिल ने दस्सिया कि पुलिस टीमां सवेर तों ही जिले के कई इलाकों च इक्को समय सर्च ऑपरेशन चला रही ने। कार्रवाई दौरान एक वड्डे नशा तस्कर सुखदेव सिंह नूं भी गिरफ्तार किया गया। वीरवे सांझे करदिया DIG ने कहा
2: बॉर्डर बेल्ट हैगी है, इत्थे ड्रॉपिंग्स जिहड़ी ड्रोन राही वैपन्स दी ते नारकोटिक्स दी ड्रॉपिंग ओह ज्यादा वा, ड्रोन दी एक्टिविटीज चल रही ने हुण, काफी उन्हां दे विच फर्क भी आया बिकॉज साडा एडी

0: आओ जी देखते दे। हाँ अगला टेलीफोन सानू किन्ना ने मिलाया है जी। हेलो,
1: हेलो, सत
0: सत श्री अकाल जी, कौन ते कित्थों बोल रहे हो तुसी?
1: श्रीकाल
0: ठीक है जी। बेदी जी कित्थों बोल रहे हो तुसी? ठीक है जी। ते आज केड़ा गीत सुनना चाहोगे तुसी?
1: जी, दर्शन
0: नगी
1: सिंह
0: नगी।
1: बेदी जी। हेलो मिठी तो
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: मर्जी ला दो, कनाल एरिया
0: ठीक है
1: मेन
0: जी,
1: से। हाँ जी,
0: उन्हां का भी
1: धन्यवाद
0: स्वागत
1: धन्यवाद।
0: है। ठीक है जी।
1: ठीक है।

नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आकाशवाणी FM बठिंडा दे सूझवान ने सरोतियो दिन मंगलवार मिति

21 जुलाई 2026, सिलसिला श्रीमद भगवद गीता, सनातन सच दी खोज यथार्थ रूप दे विच। आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा आप जी दे सर्वन ली आप जी दी खिदमत दे विच लैके हाजिर होवेगा। प्रसारण समा रहेगा दोस्तों शाम 5:30 बजे, प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग ममता अरोड़ा जी ते गुरदीप कौर गिल जी।

0: अच्छा वो क्या है?
1: वो सागर है।
0: उस सागर में
2: इस प्रोग्राम विच सानू तकनीकी साथ समूह टेक्निकल स्टाफ वालों मिलिया। प्रोग्राम दे निर्माता श्री बलजीत शर्मा। इस दे नाल ही मैनू आकांक्षा अरोड़ा नू प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी खत्म करन दी दिओ इजाजत। नमस्कार। हुणी तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी ट्यून कीता है आकाशवाणी FM बठिंडा। स्टूडियो दी कड़ी ते समा हो रहा है जी 1:59। ठीक 2 बजे तुसी सुनोगे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन ते 2:15 ते तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों।

0: Week. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses. In Sikkim's Namche district, rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
3: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
4: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है और भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
5: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया।

0: इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने

0: इसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
1: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदों में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी

0: की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट UG 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800 420 2233।

आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तों, मिति 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार शाम 5:30 बजे तुसी सुनोगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम अखर बोल देने। विशा रहेगा पैसा, धन अते दौलत।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आकाशवाणी FM बठिंडा दे सूझवान ने सरोतियो दिन मंगलवार मिति 21 जुलाई 2026 सिलसिला श्रीमद भगवद गीता सनातन सच दी खोज यथार्थ रूप दे विच आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा आप जी दे सर्वन ली आप जी दी खिदमत दे विच लैके हाजिर होवेगा। प्रसारण समा रहेगा दोस्तों शाम 5:30 बजे। प्रोग्राम हर अकाल उस्तत

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग ममता अरोड़ा जी ते गुरदीप कौर गिल जी।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है मंदाकिनी जी, तो आपको भी मंदाकिनी जी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं।
2: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार, हमारे सभी सखियों और हमारे सखाओं को और साथ में मंजरी आपको भी
1: जी।
2: और मिलना जुलना तो होता ही रहता है, देखिए जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही मुलाकातों में भी कभी कभी बदलाव आता है, कभी हम मिल पाते हैं कभी नहीं भी मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग उसमें खुश होते हैं, तो मिलकर भी बहुत खुश होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मंदाकिनी जी। तो देखिए
2: कैसे अभी मौसम बदल रहा है ना, जगह जगह बरसात होना शुरू हो गई है और गहरी बरसात भी हो रही है। जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी जगह बरसात हुई है, तो ये जो मौसम बदलता है ठीक वैसे ही प्यार का मौसम भी होता है।
1: बिल्कुल मौसम होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक विषय अपने विषय बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं।
2: अरे बताओ।
1: तो आज हल्की फुल्की बातें में हम बात करने वाले उफ घर में सामानों की उठा धराई, ये इसमें कितने बिजी हो जाती थी हमारी सभी महिलाएं, तो सखियां भाभियां मौसी चाची वगैरह, तो इस पर बात करेंगे। अपने अनुभव भी लिखकर भेजिए। और सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर स्वाति लोढ़ा लाइफ लेमोनेड और ULTA की स्कूल की संस्थापक है, इनके बारे में हम बातें करेंगे।
2: ठीक है।
1: और मुहावरों की दुनिया में खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे,
2: इस पर बिल्ली खम्बा नोचे। अच्छा,
1: तो इसके बारे में हमारे सभी साथी लोग अपने अपने विचार लिखे।
2: हाँ, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ कि हमारे जो सखी और सखा हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, इसका आपको वर्णन नहीं करना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरे का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, आपको बताना है ऐसा कोई प्रसंग जो आपकी जिंदगी में घटा हो। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोच रही होंगे, है ना, या आपके सामने खड़ा कोई इंसान है आपके जीवन में कोई भी ऐसा हो जब आपको लगता है देखा खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे।
1: बिल्कुल,
2: तो वो प्रसंग आप लिखिए तो ज्यादा मजेदार ये जो है सेगमेंट बन सकता है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे हमारे साथी सोचेंगे और लिखेंगे। और यादों से सुकून लेकिन बदलाव को समझे, इस पर भी अपनी अपनी यादें आप साझा कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग क्या चर्चा करते हैं ये तो आपको सुनकर पता चलेगा, है ना।
2: हाँ।
1: लेकिन उससे पहले एक बढ़िया से गीत सुन लेते हैं जो मौसम से ही मिलता जुलता गीत है।
2: चलिए सुनाइए।

0: तो देखिए कितना प्यारा सा गीत था, मौसम प्यार का। हमारे साथियों ने देखिए जो बातें लिखी हैं उनको तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन यादों से सुकून लेकिन बदलाव, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अक्सर होता है मंदाकिनी जी कि हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, और अच्छी यादें होती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, वहीं अगर खराब यादें होती हैं तो हर समय वही घेरे रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी से मन व्याकुल हो जाता है, और ना किसी से मिलने का और ना बात करने का ही मन करता है, ना कहीं जाने का मन करेगा, और एक तरह से व्यक्ति पूरी तरह से मतलब उसको अजीब सा लगने लग जाता है, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। और हम जब जन्म लेते हैं, हर दिन उम्र के साथ बिताया पल अगले पल में यादें बन जाता है, जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, संगी साथी, सभी के साथ बिताए दिन यादों में समा जाते हैं, और यादें हमारी अपनी स्मृतियों की अमूल्य धरोहर हैं, और जीवन पर्यंत वे बढ़ती ही जाती हैं, जिनको कोई चुरा नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक इन यादों के साथ भी होता है ना मंदाकिनी जी।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए बचपन का जो बिताया पल है, वो घर शहर, अगर मोहल्ला की बात करें, गांव है, गलियां हैं, हम उन दिनों क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, घर में सीमित साधन होते हुए भी हमारे पास सभी सुख सुविधाएं होती थी, और आपस में मिलकर हम त्योहार मनाते थे, कैसे मनाते थे, उनकी रौनक सब आंखों में याद करते ही तैर जाती है, और कहीं ना कहीं मन को

0: बड़ा सुकून मिलता है। यही यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं और परेशानियों में उन्हें याद कर मुस्कुरा भी उठते हैं कि कैसे थे वे दिन, हम कितने खुश रहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सीमित दायरा था और ज्यादा आवश्यकताएं भी हमारे पास नहीं हुआ करती थी।
1: बिल्कुल। और उन दिनों रिश्तों में प्यार होता था, एक लगाव होता था मंदाकिनी जी, और अपनापन होता था। या कोई भी मेहमान या रिश्तेदार आते तो लगता था कि वे अपने साथ खूब दिन रुके, और उनके जाने की तारीख ये बहुत जानने की उत्सुकता बनी रहती थी कि वो कैसे भी पता चल जाए कि वो कितने दिन यहाँ रुक रहे हैं, कब जाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से वो दिन बिताने, मौज मस्ती करने के बारे में हम लोग सभी लोग ऐसा सोचा करते थे। फिर उनके रहने पर तरह तरह के जो घर में पकवान बना करते थे, तो छत पर देर रात तक की बातें करना, बच्चे बच्चों के संग खेलते थे, नदी नहर तालाब पर जाना, नहाना, खेत घूमना और पेड़ों पर झूलना, आदि बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं उन।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। न जाने कितनी यादें थी, लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तारों को निहारते हुए सोते थे, और सब आज ही कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था और ऐसे हमारे जमाने में वैसा होता था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन केवल वक्त के बदलते दौर में मंजरी हम उन यादों के साथ तो नहीं जीवन गुजार सकते, है ना। जैसे ऋतुएं
1: जी
0: बदलती हैं, परिवेश परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लोगों की सोच बदल गई है, अब जीवन शैली समृद्धि की ओर बढ़ चली है। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई सुविधाएं आ गई हैं। रसोई में सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है, चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है, अंगीठी की जगह भी गैस ने ले ली है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ गए हैं हमारे घरों में। कभी हम पैदल चला करते थे, आज साइकिल तो स्कूटर कार से जाने लग गए हैं। घर में टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, सभी कुछ आ गया है और सब ऑनलाइन भी हो गया है।
1: बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं ना मंदाकिनी जी, की यादों को सजो कर रखे, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पहले के दिनों के संग और आज के दिनों में तालमेल बिठाना ही पड़ता है। और वैसे ही हम धीरे धीरे आज के सांचे में सुख सुविधाओं के आदि हो गए, जैसे कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, तो पुरानी यादों को दोहराते भी है। और यादें जहां हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं और बदलाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है। इसलिए पुरानी यादों को भूलिए नहीं, और ना ही नए समय से दूरी बनाइए। यानी जीवन का जो सौंदर्य इसी में है कि हम बीते कल से सीखें और आज की पूरी शिद्दत से जिएं, और आने वाले कल का पूरे आत्मविश्वास से स्वागत करें, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिंदगी तो पल पल बदलती है मंजरी, और इसी प्रकार हमारी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं किसी वजह से, तो हमें वो सब याद आ जाता है जिसका जिक्र अभी तुम कर रही हो।
1: और हमारे साथी में देखिए एक संदेश में लिखा है उन्होंने कि बीते पलों की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अमूल्य खजाना होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस जिंदगी में जब हम कुछ पल ठहर कर स्मृतियों की खिड़की खोलते हैं, तो एक असीम शांति और सुकून का एहसास होता है। यादों की मिठास मन को गहरा सुकून देती है, जो हमें मुश्किल वक्त में संबल प्रदान करती है। वही जीवन का अटल नियम, बदलाव हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। पुरानी यादें हमारी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती हैं। इन पुरानी यादों को एक मजबूत पूंजी के रूप में सजोएं, लेकिन वर्तमान के बदलावों को खुले मन से स्वीकारें। बहुत अच्छी सी
0: बिल्कुल
1: बात
0: वही
1: लिखी है
0: वो ना, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है और
1: जी।
0: उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, है ना।
1: बिल्कुल
0: एक श्रोता लिखते हैं कि यादों में सुकून इसलिए है क्योंकि वहां सब कुछ अपने हिसाब से हमें सजावा लगता है। जो लोग चले गए, जो लम्हे गुजर गए, जो गलतियां हमने की थी, वो सब यादों में आकर धुंधली और खूबसूरत तो हो जाती हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं होता, बस एक ठहराव है जो दिल को थाम लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी सुकून में उलझे रहें तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जिंदगी स्थिर नहीं है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमें स्वयं को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो ये बदलाव है इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जिंदगी में संतुलन बना रहता है।
1: बिल्कुल मंदाकिनी जी। और देखिए यादों की बातें करते करते हमारे पास अभी अंतराल का भी समय होने वाला है, तो अंतराल के बाद फिर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबकी यादें साझा करेंगे। तो लेते हैं एक अंतराल।
0: ठीक है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो हम लोग बात कर रहे थे यादों के बारे में। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, लिखती है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी और अंक लिपि लिखा करते थे, और अब आज उस समय की यादों सजोते हुए स्मार्टफोन और को दिल में बसाकर मैसेज भी लिखते हैं, क्योंकि पुरानी यादें हमें सुकून, शांति और खुशी देती है, वर्तमान की भागदौड़ में ऊर्जा देती है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ हो रहे बदलाव को भी पल पल समझना और अपनाना होगा, नहीं तो जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी यादें इन्होंने दी अपने संदेश में।
1: और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादें जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं। कठिन समय में वही यादें हमें सुकून देती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। लेकिन हमेशा यादों में ही खोए रहना ठीक नहीं होता। यादों को दिल में संजो कर रखें, लेकिन वर्तमान को पूरे मन से जिएं और आने वाले बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें, क्योंकि सुंदर यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और सकारात्मक बदलाव हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यही जीवन का संतुलन भी है।
0: और एक साथी लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ पर, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो ही मुस्कुराते मिलते हैं, सामने है जो बस वो तो एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं। यादों का सुकून आज भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाए आप तो हमें रास्ता उसका दिखा दीजिए।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी, बहुत ही प्यारा लिखा है जिसे आपने शायद पढ़ भी दिया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं। अच्छा, ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है हमेशा
0: जी,
1: है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है। कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं, और बच्चे कहते हैं अभी हम हटाइए, दूसरा लाइए। और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता। फिर उसको जब छोड़ते हैं, नई चीज आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: तो चलिए इन्हीं यादों के साथ एक सुन लेते हैं गीत।
1: गीत बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: बहुत अच्छा गीत सुनवाया अभी आपने, यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है।
1: जी
0: और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीजें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजीवी, और फिर वो खो जाती हैं यादों में। अलमारी खोलती कई देर हो जाती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कहाँ खो गई। तो इस तरह से भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि पुरानी चीजें हमसे छूटती नहीं है।
1: बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत मंदाकिनी जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी के बारे में। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम स्वाति लोढ़ा जी के बेहद जो प्रतिभाशाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी, PhD शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कारपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक निदेशक और JNU में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित AIMSR आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रही हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है, और इसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी हैं। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक पहलों की संस्थापक वो रही हैं। PD प्राइवेट लिमिटेड, इनकी स्थापना उन्होंने, स्वाश PD प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी। और ये संस्था युवाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।
1: इसके अलावा लाइफ लेमोनेट के आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है और वे नेतृत्व, पेरेंटिंग, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय, सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉरपोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देश भर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
1: जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ, और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी, और कविता से गद्य में जो है कदम भी रखा। और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में

0: राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
1: इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में, सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा, जो एक कवि और अभिनेता लेखक भी हैं, और जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं एक गीत की ओर।

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब पहले का समय होता था मंजरी, आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो है घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं। जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती है। खासतौर से महिलाएं जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया। परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि भी सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी जू तक नहीं रेंगती।
0: और एक समय था जब घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है। चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है, घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा कुतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आंख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी, उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी। बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे या पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से तह की भी साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी, और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। तो इस तरह का नजारा हमें याद आता है।
0: बिल्कुल। और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की चश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत शाम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन। यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था, जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोज लेती और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो कर यही कहती भाई तुम्हें उससे क्या काम।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा।
0: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं।
1: हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखी और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी एले गोटे का गोला, जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी शादी के लहंगे से निकला हुआ, वो भी संजो कर रखा होता था। छोटी पोटली, 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी, नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और कंगन मोतियों की मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा, और वो सुई बटन हुक न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था, और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
0: बिल्कुल, कितनी सारी यादें पास चली आती थी। और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना, और पापड़ चिप्स

0: जाने क्या क्या बढ़िया
1: बनाना।
0: है इन सबको बनाना, और बारिश से पहले पीपे भर कर सब रख लिया जाता था, और दिन महीने साल साल उसकी उठाधाई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और सब काम एक अभियान जैसे होते थे, और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया
1: और
0: है।
1: किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा
0: बिल्कुल
1: कोई भी नहीं। सब मिलकर घर को संवारते थे, बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाया करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे। तो हम पूछते, आप थकती नहीं है? कहती, काहे की थकान, सब मिलकर काम
0: सही
1: करते
0: बात,
1: हैं।
0: सही
1: तो
0: बात।
1: घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था। और बिना कारण जो भाग दौड़ हुआ करती है आज के जमाने में, वो नहीं होती थी। आले ताखे जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी, और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे। हाथ के पंखे होते थे और खटिया, पलंग, तख्त के सिरहाने पर भी वो रखे होते थे।
0: आराम से
1: हाँ
0: रहकर मिल जाते थे आराम से, है
1: हाँ
0: ना
1: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था, या
0: जी।
1: दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता
0: बिल्कुल,
1: था।
0: तो ये भी एक सही एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे, और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह, अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूंथ दी हो,
1: बिल्कुल
0: एकदम
1: सही कह रही हो मंजरी।
0: जी
1: लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर, जहां
0: जी
1: बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है। कभी चश्मा यहाँ, मोबाइल वहां, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे। मतलब आधा समय कहाँ है सामान, कहाँ है मेरे मोजे, कहाँ है मेरा
0: जी
1: मोबाइल। इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय में।
0: बिल्कुल
1: और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग बाग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
0: बिल्कुल। और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माँओं का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना इनका समेट के, तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही है, थकी आई है, तो खाने में भी समय देना है उन्हें, तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई
1: हाँ,
0: धराई का हो
1: जो
0: गया है।
1: बिल्कुल नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं ना, उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी? जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती हैं। तो आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर के
0: बिल्कुल
1: हमने सामान उठा के घर में भर लिए हैं, और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है, कभी खत्म नहीं होता। भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा पेन
0: जी,
1: कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ
0: यानी
1: है
0: कहने का
1: ना?
0: मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती
1: लगी
0: थी, और
1: रहती
0: कोई
1: थी,
0: शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए, और उठा धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए
1: हाँ, तो
0: जरूर।
1: मंजरी इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है, और
0: बिल्कुल
1: घर स्वर्ग जैसा लगता है।
0: बिल्कुल। और हम लोग सुनते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तुमन जी, अभी
1: फिर
0: हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें, घर में सामान की जूठा पटक है, बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है। किसी को वो सामान यहाँ जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है, लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहां पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है, मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहाँ घर जहाँ लोग रहते हैं वहां रखी चीजों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए, और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती है, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीजें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा कर देती हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठा पटक कई बार लगता है, अच्छा ये चीज यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
1: और एक लिखते हैं कि उफ, घर में सामानों की उठा पटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा। बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठापटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठापटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो यही रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठापटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठा पटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम। अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना। इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठा पटक होगी ही, कुछ शरीर की भी, कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है, संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं, गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है, अभी मजा, अभी यहाँ

0: हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
1: यानी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर। तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहां हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहाँ नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी, क्या बात है, और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गए।
1: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो बात चल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे क्या है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती उसे, पकड़ नहीं पाती है, शर्मिंदा होकर पास खड़े खंबे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इसी स्थिति को इंसानों की उस मनोदशा से जोड़ा गया है जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ देता है और बेमतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ ही एक साथ लिखते हैं कि किसानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो। ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: वही एक श्रोता ने लिख रहा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खींच किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खींच बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
1: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए, ऐसी ही कहावत गुजराती कि लाज माने बदले गाजवू, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है। जी
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहाँ उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ कुछ बात बोल रही थी, दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही। उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने खूब चिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी दूध मक्खन को छत पर रस्सी का छींका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खंबे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खंबा नोचने लग जाती है।
1: तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं।
0: गे गे, गे।

0: तो मैं नंदाकिनी जी, देखिए बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं, लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

की सहेली

0: आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया,
1: जुबान पे दर्द भरी दास
0: कभी थपकी दी और बहलाया,

0: कभी इन गानों ने हमारी खुशियों की साझेदारी की।
1: जय जय शिव शंकर, माता लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया।
0: कभी इन गानों ने हमारी मोहब्बत का

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यहीं से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी,
1: एक गली में दिल्ली में घूमते घूमते,
0: अरे
1: ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है,

0: उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस और एक और कनेक्शन है
0: अच्छा
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया,
0: जी,
1: वो भी
0: ये मेरा
1: कनेक्शन बन गया,
0: सौभाग्य है,
1: तीसरा
0: बिल्कुल।
1: कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहां लोग क्या-क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ, भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया,
0: जी,
1: तो 1947 में वो इंडिया आए।
0: सरहद के इस पार आ गए।
1: हाँ, जो उनके 17 साल थे वो, उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई
0: जी
1: मेरे देश में,
0: बिल्कुल।
1: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
0: क्या प्यारी
1: अगर
0: बात है।
1: मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है।
0: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है, उसमें
1: हाँ
0: उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
1: हाँ पवन चले पुरवाई,
0: हाँ
1: क्योंकि जिसे कि हमारे खुले गांव में
0: हाँ
1: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन,
0: बिल्कुल।
1: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें बहुत

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे
1: हाँ
0: रावलपिंडी की, और
1: क्या बात
0: जिंदगी भर
1: है।
0: उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबर्ड में उस बॉटल के अंदर।
1: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है। मेरे देश में पवन चले पुरवाई में, बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे
0: अरे
1: देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
0: और
1: और
0: अमवा की डाली पे गाए मतवाली,
1: क्या बात है,
0: कोयलिया काली निराली।
2: अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो पतझर मस्त बहार।

0: मट्टी ने सोने की सूरत पाई मेरे देश में, हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश।
1: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी,
2: उसका पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
1: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
2: उन्होंने वो कविता लिखी

0: क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया,
1: जी
0: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना, तो
1: बिल्कुल
0: उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना, भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी, उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
1: पिंडी की मिट्टी। मेरा
0: तो।
1: सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है। एक किताब है बख्शी साहब की कविताओं की जिसमें वो
0: हाँ, मैं
1: संग्रहित है।
0: जादू हूं चल जाऊंगा,
1: जी
0: उसमें लिखी, मेंशन की हुई है। हाँ
1: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटिए। जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीजें।
0: हाँ क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। हाँ,
1: और ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
0: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
1: पंजाब प्रांत।
0: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जो जेल्स थे, वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है, अभी कुछ 3 4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी, तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब, कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
1: सब
0: कि इधर ये,
1: पहचानते थे। क्या
0: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये,
1: कहलाती है, मोहियाल
0: मोहयाल, मोहयाल। हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहयाल्स।
1: जी।
0: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में है, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन।
1: जी जी
0: हाँ,
1: जी
0: वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था।
1: खराब माना जाता था।
0: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी, हफ्ते में 2 3 दिन। क्यों? पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
1: अरे गजब।
0: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे, सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में, तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने में नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो जिस
1: वाह।
0: दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
1: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त।
0: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे, और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी, कि तुमने ये ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको,
1: जी।
0: और वो करीब कुछ 12 13 साल की उम्र से ही नज़्में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे, और उस पर एक्टिंग भी करते थे, क्योंकि
1: वाह वाह
0: जब
1: वाह
0: मोहल्ले में रामलीला होती थी
1: जी।
0: तो उनको भी पकड़ा जाता था डायलॉग,
1: अच्छा
0: मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब को, टीनेजर, उनको बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
1: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
0: हाँ, फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से, बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है?
1: समंदर
0: इतने
1: के पार है।
0: समुद्र के पार है। तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं,
1: हाँ
0: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है, तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
1: एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ गया कि उसकी मंजिल बंबई है।
0: हाँ। तो जब वो 14 साल के थे, उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर अ मार्शल क्लैन,
1: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
0: कैडेट, यू द नेवल कैडेट। और उनकी भर्ती हुई दो शिप थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिप में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
1: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
0: हाँ, 1942, तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई, तो जो म्यूटिनी हुई वो बंबई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट,
1: ये जो बगावत थी नेवी
0: बगावत।
1: की, ये
0: हाँ,
1: बहुत मशहूर है
0: बहुत
1: और
0: मशहूर है,
1: इसका
0: बहुत,
1: इतिहास में दर्ज
0: बल्कि
1: है
0: ये
1: इसका
0: पहली
1: नाम।
0: बगावत, सेकंड बगावत थी, जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पे राज नहीं कर सकेंगे,
1: जी
0: क्योंकि देखिए आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो

0: करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके कू बन जाता है, लेकिन भी कू
1: बिल्कुल,
0: तो दैट इज वेन रिलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा
1: जी।
0: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे, उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा।
1: अरे
0: तो
1: अरे अरे,
0: उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था
1: हाँ
0: नेवी ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटनी हुई तब पैदा हुआ, वहां उनको एहसास हुआ क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था,
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी
0: बहुत कम थी।
1: जी।
0: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच ए पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं,
1: जी
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो
1: बिल्कुल
0: मैं तुम्हें रस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, ही हैड टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की सिग्नल्स।
1: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
0: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है
1: जी
0: और एक जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है,
1: जी
0: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट,
1: जी
0: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकंड लाइफ दी कि तू जा,
1: जी
0: देखो मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में,
1: और छोड़ दिया। सबसे
0: छोड़ दिया।
1: इंपॉर्टेंट
0: हाँ,
1: बात,
0: यू आर रस्टिकेटेड विद डिसऑनर।
1: अब जब घर आए तो क्या हाल हुआ?
0: घर आए तो फिर नेचुरली फिर तो इमीजिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया गुरुकुल, जम्मू
1: जी
0: के पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी। तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे, उनके तीन, ये तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का ये सपना था कि हम बंबई जाएंगे कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
1: और बाकी
0: दो
1: दूसरों
0: का कुछ था, उनका कुछ सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
1: अरे बाप रे,
0: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बोतल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया। और जो से पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहाँ जाएगी, यहाँ से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बम्बई पहुंच जाएगी,
1: हाँ।
0: और हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के सब पैसे वैसे जेब में, जो भी 5, 10, 6 रुपया 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने दो तीन एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त,
1: अरे अरे अरे,
0: घर चले गए वापस, घर चले गए वापस। तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
1: फिर
0: स्कूल
1: पिटाई
0: जाने के
1: हुई।
0: लिए सब शोर जबरदस्त पिटाई हुई।
1: अरे अरे,
0: तो उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहां से निकालो, ये यहाँ खराब हो गया गांव में,
1: यहाँ गलत संगत,
0: गलत संगत होगी इसकी, इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के, तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक, तो वहां ये सुधर जाएगा। तो भेजा।

0: टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, हाँ, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना, करें ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी, लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्होंने वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो वो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटी वीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, तब किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है अपना, हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है ही नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा।
1: मिलेगा
0: हाँ, फॉर एवरी क्लास

0: दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा।
1: दूध मिलेगा।
0: हाँ, फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विथ मलाई ऑन टॉप। और वो जमाने के ग्लास इतने बड़े बड़े रहते थे
1: बिल्कुल।
0: ग्लास।
1: और वो पंजाबी व्यक्ति
0: हाँ,
1: दूध का, दूध और
0: दूध का
1: पनीर
0: शौक। हाँ,
1: मलाई।
0: गांव में पैदा हुए हैं
1: जी
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे। वो रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्शी साहब ने देखा, यार ये तो खूब पिटाई हो रही है लेकिन यार दूध भी मिल रहा है।
1: हाँ।
0: तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी न किसी के पीछे छुप जाते थे।
1: ताकि रिंग में ना आना पड़े।
0: हाँ, वो रेंज में नहीं आया, आंखों आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो
1: हाँ।
0: 3-4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए।
1: हाँ।
0: लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला, यार तुम कौन हो, हैव यू ज्वाइन न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर? इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में? वो, सर 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए,
1: अभी तक मेरे हाथ से
0: अभी तक
1: पिटा
0: मेरे हाथ
1: नहीं।
0: नहीं लगा। ये उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने।
1: अरे बाप
0: अरे
1: रे।
0: जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को। बख्शी
1: हाँ।
0: साहब अगले दिन भाग गए वहां से।
1: अरे अरे
0: सुबह उठे, सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना,
1: जी।
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। और तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया,
1: हाँ।
0: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
0: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है। और क्योंकि वो दरोगा जी थे, वो
1: हाँ।
0: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज उस हिसाब से। तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से। तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन,
1: जेवर।
0: गहने वहने, हाँ, खाना, जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल। तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए। दे वर 2-3 फैमिलीज, दे वर वेरी प्रिविलेज पीपल। और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए फ्रॉम रावलपिंडी। पता नहीं कि बीच में के रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डो नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा
1: ट्रेन में
0: गया,
1: आए,
0: रेप हो
1: दंगों का
0: गया,
1: शिकार
0: मर्डर हो
1: हुए।
0: गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वालों को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे, क्योंकि
1: इतना
0: किसी
1: यकीन
0: को,
1: था।
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, तब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए। तो यहाँ कुछ 4-5 दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन। तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि 5 बहन है और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द सेकेंड मदर।
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ। तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सबने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, मतलब सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाबूजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में रातों रात वहां से जब निकले। अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ।
1: तो वो तस्वीर उनके लिए
0: वो
1: बहुत मायने
0: तस्वीर ही
1: रखती
0: उनकी
1: थी।
0: मेमोरी थी कि ये,
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ। इन्हों जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूं, क्योंकि क्या है कि उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, वो हर एक बच्चा अलग होता है। कोई बच्चे को लगता है कि मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो। तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब।

0: क्या गजब की बात। तो मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूं उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी
1: वाह,
0: प्यारी है ओ माँ।

0: और कोई नहीं
1: क्या
0: लिख
1: बात
0: सकता ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, लड़के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है। ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती है ना,
1: यस बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी मम्मी को बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपने मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है, इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है।
1: क्या
0: हमसे
1: बात
0: पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता।
1: माँ का मोल समझो।
0: हाँ
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से वो थी पिंडी की मिट्टी।
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा, और उनके जाने के बाद जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे उसमें, एक बॉटल नहीं मुझे वापस मिली।
1: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है
0: हाँ इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे,
1: जी।
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग,
1: दुनिया से जाने
0: दुनिया से
1: वाले
0: जाने वाले। आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे।
1: वो उनकी जिंदगी की कहानी।

0: है कहाँ।
1: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे, और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
2: जो रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
1: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े बड़े?
2: हाँ, तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में। तो उनके जो लिखाई है वो भले हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी,
1: जी जी
2: हाँ,
1: जी
2: लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
1: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
2: हाँ, मैट्रिक पास ना, 8th स्टैंडर्ड तक तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में। तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो वो फिर वापस आ गए थे।
1: जी, पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
2: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पूना शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप,
1: सरकार ने भेजा,
2: सरकार ने। फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र शूट नहीं किया। दे वॉन्टेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही हैं, पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा। तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में। तो पूना से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया, फिर उनको घर दिए गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला।

0: जगह है सराय रोहिला। तो फिर पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उन्होंने ही ज्वाइंट इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन
1: जी
0: एंड
1: जी
0: टेलीफोन ऑपरेटर।
1: ओके
0: तो उनका जो कोड नेम था एज अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
1: जी जी
0: और टाइपराइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर नेम, सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, ये तो एनिमी इज रिकॉर्डिंग आवर
1: तो वो
0: कम्युनिकेशन,
1: नहीं जान
0: उनको
1: पाए
0: पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
1: बंदा कौन है, उसकी
0: बंदा
1: लोकेशन क्या
0: हाँ
1: है।
0: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था,
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
0: वाकई में आजाद थे वो,
1: क्या बात
0: आजाद
1: है।
0: दिल के।
1: अच्छा, उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से
0: जबलपुर
1: पहले,
0: में पोस्टिंग हुई थी इनकी,
1: हाँ
0: ही
1: नहीं,
0: ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर,
1: ट्रेनिंग वहां हुई।
0: 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई। तो उनका जो सर्टिफिकेट है, जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब
1: जी
0: में,
1: जी जी
0: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो आपका
1: हाँ
0: गांव है।
1: बिल्कुल। वहां पर स्पेलिंग लिखी जबलपुर। आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है वो अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है, और क्योंकि मेरा शहर है तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं, जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि यहां बख्शी साहब रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी। मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे
0: हाँ
1: नोट्स लिखे हैं
0: हाँ
1: साइंस के, तो वो देख के ऐसा
0: लेकिन
1: लगता है कि
0: कमाल
1: वो
0: की बात
1: एक,
0: है, ही वॉज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन,
1: तो वो
0: मतलब
1: टच
0: वो
1: नहीं करते थे।
0: स्क्रू ड्राइवर डालने में भी घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ही वॉज लाइक दैट
1: नहीं, लेकिन वो जो
0: उनको।
1: नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें
0: हाँ
1: तो क्या सर्किट,
0: सब कुछ, लेकिन एक
1: बहुत सुंदर
0: होता
1: राइटिंग में
0: ना
1: सब
0: कि
1: कुछ
0: एक
1: है।
0: फोबिया होता है, शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था, एक चिपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया, वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ 2-3 साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूं, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
1: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
0: घर पे भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना। बोलते अभी जाना है, खेलने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या गोटी खेलने जाना है, या गिति किति खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा, गोगी आएगा तब जाना। तो हम लड़ते थे डैडी के साथ, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली, तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका, घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं, या माय ब्रदर, या माय सिस्टर, और माय मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूं साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5, और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो, दूसरी आई है, लेकिन वो माँ नहीं है,
1: तो एक अकेलापन आ जाता।
0: अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट,
1: जी जी जी
0: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू,
1: यस,
0: अकेलापन मे नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडेंट यू आर हर्टिंग योर सेल्फ,
1: कि मेरा तो कोई नहीं है।
0: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है,
1: हाँ,
0: मेरी
1: मुझे
0: माँ ने
1: छोड़
0: मुझे
1: दिया।
0: छोड़ दिया, तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो को लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई, मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो जख्म था, वो भरा नहीं कभी, इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनी बडी रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: सेवेंटीज एटीज में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रांग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की,
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का, तो ये सब है। तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी। एक तो ही फेल्ट लेटर तो व्हेन ही ग्रो ओल्डर देन ही रियलाइज्ड दैट शी डाइड बिकॉज शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी
1: जी जी लेडीज की, बिल्कुल।
0: लेकिन वो जख्म जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला, और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों होता है?
0: दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था, 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें। वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया उनको। उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था, इसे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये डर बाद में आया, कब आया, जब शोहरत आई, शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में,
1: स्ट्रगल।
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरे पे बैठते थे, जहां वो बैठ के गाने लिखते थे, वहां एक दो घंटा गाना लिखा, दो तीन जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के, वो जो जिंदगी जीती उन्होंने
1: उसको
0: 1956 में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो।
1: अरे गजब।
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने, वो इंसान खो गया, क्योंकि अब इसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो, क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले हैं लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट पेंट्रा स्टेशन यार, माय फ्रेंड्स यू आर गोइंग ऑन ट्रेन यार,
1: ट्रेन से जा रहे थे क्या बात है।
0: हाँ, एक जर्नलिस्ट मुझे, दो तीन जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शी साहब को देखते थे यार
1: ट्रेन में जाते,
0: हाँ, क्यों जाते थे। तो बोले कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा।
1: ये बहुत बारीक,
0: तो स्पिरिचुअल ताकत वापस आएगी,
1: बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बंबई जा यार, तू बंबई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बंबई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वाज अ वेरी सीरियस एटमोसफियर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो, बिकॉज दैट इज व्हेन यू जॉइन द आर्मी इट वॉज पेट्रियोटिज्म, व्हेन यू जॉइन द नेवी इट वॉज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया। कैसे, उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सीलेंट सिंगर and he performs very good stage shows and I so-and-so commander officer captain recommend him to anybody in the film industry to please give him a work as a songwriter.
1: गजब। यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम दो,
0: सिनेमा में काम दो।
1: वाह वाह,
0: वो है मेरे पास चिट्ठी है, हमारे पास रेडीनेस को संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखाते थे बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत।
1: हाँ, इंडस्ट्री वालों को थोड़ी पता है
0: क्या कीमत है कैप्टन की।
1: जी, आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे बड़े खाने के दिन?
0: प्लेस, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर लेते, लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी, और एक्टिंग भी कर लेते थे। ये वाज द मेन स्टार ऑफ बड़ा खाना शोज।
1: और ये एनुअल इंपॉर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के उनकी धुन पर गाने लिखना शुरू कर दिया।
0: हाँ, जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी
1: जी,
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था, 28-29 टाइम्स। क्यों देखा था? ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था,
0: ये उनका रियाज था। वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरिक्स में उसी फिल्म के

0: पे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रेकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा है यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट पहली बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रिटाइज हुआ कि मैं यहां के लिए नहीं बनाऊं, मैं वहां के लिए बनाऊं।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे,
0: छोड़ी
1: बंबई आए,
0: 1950
1: साल
0: में,
1: कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया सेविंग्स बंबई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए।
1: बंबई तो शहर ही निराला है।
0: और वापस आर्मी ने को लिया, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स नहीं उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में बंबई आए
0: हाँ, 3 महीने
1: और
0: में वापस
1: तीन
0: चला
1: महीने
0: गया,
1: में वापस चले गए
0: वापस
1: और
0: चले गए
1: वापस
0: हार
1: आर्मी में।
0: हार के। और वो जो टोली ने उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो दे वो वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना छोड़ा मुंडा वापस आ गया है, थोड़े आज को रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमिजिएटली। फिर उनकी शादी हो गई, क्योंकि
1: और
0: शादी के
1: शादी
0: लिए
1: भी
0: जो भी
1: लखनऊ
0: था,
1: में हुई,
0: हाँ शादी लखनऊ में हुई।
1: ये लड़की कैसे
0: और
1: मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है, वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का। तो बोला यार तू इधर क्या कर रहा है, तो बोला मेरी तो शादी है, तेरी शादी है, हाँ तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है, तो मेरे मम्मी का भाई था वो। हाँ,
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी ना,
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक बुआ थी, शी वॉज वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री,
1: अच्छा।
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड हमारे मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में,
1: जी
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था, नंद
1: हाँ, आनंद से नंद।
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा, क्योंकि वो
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त थे वो।
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प। और सबसे कमाल की बात है, शी इज अ सीमस्ट्रेस, ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई
0: सिलाई।
1: बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है,
1: अच्छा, साइकिल चलाना बहुत बड़ी खासियत
0: बहुत
1: थी।
0: बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए। लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह
0: नहीं
1: वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
0: नहीं कुछ देखना होगा ना, क्या कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप, देखने देखने सीधा
1: सीधे शादी तय।
0: शादी तय। और उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ, ये देखिए, ये कमाल की
0: हाँ,
1: बात है। और यही बख्शी साहब ने आगे
0: और
1: चल के
0: साहब ने
1: गाना
0: गाना भी लिखा
1: लिखा,
0: है यार,
1: लड़की साइकिल
0: साइकिल
1: वाली।
0: वाली, बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ।

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
1: आकाशवाणी दे अदबी सूझवान बुद्धिजीवी सत्कारित सरोतियो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सरोतियो प्रोग्राम हर अकाल उस्तत ते सिलसिला तुसीं लगातार सर्वन कर रहे हो श्रीमद भगवद गीता सनातन सच दी खोज एक यथार्थ रूप।

आत्मा दे टोटे नहीं हो सकते। ए केवल जदों एक थां हुंदी है तां दूजी थां नहीं हुंदी। सदीवी होण कारण ए हर थां पसरदी है। जिस तरह आकाश है इसे तरह आत्मा रूप है। ए परपक है। ए हर थां होण कारण हटाई नहीं जा सकदी। इस उपर समय दा प्रभाव नहीं पैंदा। इसे लई ए सदीवी है।

आत्मा ना चीरी जा सकती है ना वंडी जा सकती है, ये अनंत सदीवी है। ये केवल एक समय एक स्थान ते रहिंदी है, दूजे थां गैर हाज़िर।

ए कलियां ने जोबन भी सांभे पए ने, दिल है कि बस तेरे ख्याला च रहिंदा, ए दुनिया दे तंदे ता लंबे पए ने।

मैं साडे श्रोतियां नूं गुजारिश करदा हां कि इस प्रोग्राम दे विच सानूं नौजवान साथी ही कॉल करनगे जिहड़े कंपीटीशन इम्तिहानां दी तैयारी करदे आ जां पढ़दे ने डिग्रियां कोर्स करदे ने। इह नौजवान साथियां दे लई है। साडे नियमित श्रोता जिहड़े ने उह

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 14555 ते कॉल करो।
1: जी असं साडे स्रोतियां नूं समां दस दईए, 6:39 ते 45 सकिंट। फोन नंबर दसो जी
2: 0164-2240-331। साडे नवे कॉलर साडे नाल जुड़ चुके ने, आओ इन्हां नाल करदे आं गल्लबात ते पुछदे आं इन्हां नूं सवाल। हैलो।
3: हैलो,
2: हां जी, की नाम है जी तुहाडा?
3: संदीप गल कर रही हां, डिस्ट्रिक्ट मानसा तों।
2: ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच।
3: थैंक यू सर।
2: की करदे हो जी तुसीं?
3: अस स्टूडेंट हां जी।
2: ठीक है जी, किस स्टडी दी तुसीं स्टूडेंट हो?
3: सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी तैयारी कर रही हां जी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है जी।
2: ठीक है जी, ठीक है, तुसीं साडा सवाल सुनना ध्यान नाल ते उस तों बाद देना जवाब।
3: हां जी,
2: राष्ट्रीय खिडारी हर्षवीर सिंह किस खेड नाल संबंध रखदे हन?
3: सर एथलीट।
2: नहीं, इस तुहाडा सवाल है जो गलत हो चुका है, आओ तुहानूं दसदे हां सी सही उत्तर इस दा की है
1: जी।
2: इसका जो सही उत्तर है, जो राष्ट्रीय खिडारी हर्षवीर सिंह है, वह साइकलिंग खेड नाल संबंध रखते हैं।

0: इंदौर वे थी?
1: नहीं
2: नहीं
1: गलत
2: जी,
1: तुहाडा
2: बहुत
1: जवाब
2: गलत।
1: जड़ा है वह गलत हो गया। फोन करने शुक्रिया जी, डटे रहो इसे तरह फोन मिलाते रहो श्रोते हो। तो इस दा सही जवाब तुहानू दे रहे ने सुरेंद्र सिंह जी। केन वेतवा प्रोजेक्ट जड़ा है मध्य प्रदेश के किड़े जिले च स्थित है जी? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले विच चल रहा है
2: जी,
1: जी।
2: छतरपुर दे विच चल रहा है केन बेतवा। ये दो दरिया ने, एक केन है ते एक बेतवा दरिया है। ये प्रोजेक्ट जड़ा है इस लई चलाया गया कि जो मध्य प्रदेश ते उत्तर प्रदेश का एक खिता है जिसनों बुंदेलखंड का इलाका आख दिता जाता है मोटे तौर पर, उदे च मध्य प्रदेश ते उत्तर प्रदेश दोनों का ही हिस्सा है। उस इलाके नूं सिंजण दे लई, उस इलाके नूं सिंजण दे लई केन दरिया का जड़ा पानी है वह बेतवा दरिया दे विच पाया जाना है वाधू पानी। तो उस दे लई ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिस दे चलदे उत्थों दे बशिंदे जड़े ने, लोग जड़े ने उत्थों दे, इस दा कुछ विरोध भी जता रहे ने जी।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: आवाज दी दुनिया दे दोस्तों नमस्कार। तुहाड़ा दोस्त लवलीन सचदेवा प्रोग्राम श्याम सुहानी लैके तुहाड़ी सेवा विच हाजिर है। अज मेरे नाल ने मेरे सहयोगी
2: जसविंदर कौर।
1: मुझ में हजार खामियां हैं माफ कीजिए, मुझ में हजार खामियां हैं माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो जरा साफ कीजिए, अपने आईने को भी तो जरा साफ कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यकीनन साडे विच हजार कमियां त्रुटियां होणगियां ते साडे दोस्तां मित्रां विच वी होणगियां, पर सानू जेकर असी सच्ची मुहब्बत करदे हां, प्यार करदे हां, सच्चे रिश्ते ने, तां उहनां दीआं गुस्ताखियां ते गलतियां वल ध्यान देण दी लोड़ नहीं, सगों उहनां विच की पॉजिटिव है कि वधिया है उसनू वेखना चाहिदा है। जसविंदर जी की कहना चाहोगे?
2: बिल्कुल सर, क्योंकि साडा दिमाग ये हैगा वी इदां दा हैगा कि आपां नैगेटिव चीजां नू बहुत छेती ग्रहण कर लैंदे आ
1: जी,
2: ते इस तों बैटर है वी असीं पॉजिटिव चीजां नू ग्रहण करिए, सकारात्मक चीजां नू ग्रहण करिए।
1: बिल्कुल सही जसविंदर जी। स्रोतियो जेकर तुसी अपने दिल दीआं गल्लां इस विशे ते साडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदे हो जां फिर तुसी अपनी पसंद दा कोई भी गीत सुनना चाहुंदे हो तां हुणे डायल करो 0164-2240-331। तुहाडी फोन कॉल दा इंतजार करदा होया चला रहा तुहाडे लई एक गीत।

0: जी हाँ श्रोते, फोन की घंटी वज रही है, वेखते हैं कि श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। प्रोग्राम शाम सुहाने विच आप जी का स्वागत है। अपना नाते ग्रां दसो।
1: इंद्र कौर भगवानगढ़ जी।
0: भगवानगढ़ तो बोल रहे हो, अपनी फरमाइश भी दस दियो। अपनी फरमाइश दसो, केड़ा गीत सुनना चाहोगे?
1: इंद्र कौर जी
0: जी, फोन करने शुक्रिया, पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक गीत।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: जी हाँ श्रोतियो, तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी दा अपने रेडियो दोस्त लवलीन सचदेवा ते
3: जसविंदर कौर नाल।
2: जी हाँ श्रोतियो, वेखदे हां किसने डायल कीता है 0164-2240-331। हैलो
4: कल सर, संदीप सिंह राजस्थान हनुमानगढ़ जंदावाली तो बोल रहे हैं जी।
2: नमस्कार, सत श्री अकाल। संदीप सिंह जी, प्रोग्राम शाम सुहानी च आप जी दा स्वागत है।
4: हां जी,
2: की हाल चाल ने?
4: बहुत वधिया सर, लास्ट टाइम भी सोडे नाल ही गल हुई सी और अज फिर सोडे नाल मुलाकात हुई।
2: मेनू लगदा के सरहदां दे राख्या नाल मेरी गलबात हो रही है ना?
4: जी सर,
2: संदीप सिंह दी फौजी वीर ने मतलब इन्हां दी बदली हुंदी रहिंदी है, कदे श्रीनगर कदे राजस्थान, है ना, अलग अलग जगह।
4: बिलकुल सर बिलकुल,
2: सानू तुहाडे ते माण है, फखर है। अज कित्थे आए हो, कित्थे वी राजे हो?
4: ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੰਮੂ ਚ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਵੈਸੇ 5-7 ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼।
2: ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
4: ਹਾਂਜੀ,
2: ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ?
4: ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੋਰਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ।
2: ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੰਗ ਮੁੱਕਿਆ।
4: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਚ ਬਹਿਮਨ ਦਵਾਨਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ
2: ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੋਈ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
4: ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸੌਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗਾ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ।
4: ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਰਪੰਚੀ।
2: ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
4: ਧੰਨਵਾਦ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: जी हाँ श्रोतियों, इस वेले साढ़े स्टूडियो की कड़ी मुताबिक समा हो रहा है शाम के 7:15-25। तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी का। वेखदे हां किहड़े अगले श्रोता लाइन ते ने। हैलो,
3: हाँ जी रवनीत, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल,
2: सत श्री अकाल, नमस्कार। अपना नाम ते ग्रां दसो जनाब।
3: मानप्रीत नूं वी सत श्री अकाल बोल देंगे
2: जी। जसविंदर जी ने मेरे नाल, हाँ जी उन्हां वालों भी सत श्री अकाल कबूल करो श्रीमान। आवाज प्यारी मिठी बुलंद आवाज साडे सारे श्रोता पछाण दे ने। की हाल चाल ने?
3: वधिया जी वधिया, थोड़े नाल गल होगी होर वी वधिया हो जाने।
2: चलो वाहेगुरु मेहर बनाई रखे। कोई बारिश बुरी दे आसार नजर आ रहे हैं जी?
3: देखो जी मानसून कमजोर ही है, मुश्किल आउंदा हरियाणे हरूणे च, अपने तहारे सूबे च, हिमाचल प्रदेश च, उत्तराखंड, सारे च पई जांदी
2: है। हुणे एक कॉल लगी सी संदीप सिंह जी दी, ओह दस रहे सी कि राजस्थान च वी पिछले 3 दिन तो बारिश हो रही है।
3: नहीं जी जम्मू कश्मीर दी गल करदा सी ओह।
2: हाँ जम्मू कश्मीर दी गल कर रहे सी।
3: हाँ जम्मू कश्मीर तो गल कर रहे, उत्थे दे हालात बहुत माड़े ने, मौतां भी हो गईआं।
2: अच्छा अच्छा,
3: उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश होर सारे सूबे च पई जांदा हरियाणे च वी पई आ। अपने थोड़ी जी चार जिलां च तां हैगी है गुरदासपुर खड़ी,
2: अपने भी मंगवा लो बठिंडे च वी।
3: बस आज हुण अज सवेर पा दूगा वो, अपने कहड़ा इन्ना तां नहीं रब ने आपां नूं होकर।
2: चलो तुहाडी गल ते असीं फुल चढ़ाने आ ते अपनी फरमाइश दसो हरबंस सिंह जी। जी फोन करने लई शुक्रिया जनाब। पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक गीत।

जी हाँ श्रोते, फोन दी घंटी बज रही है, वेखते हैं किहड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। प्रोग्राम शाम सुहानी विच आप जी का स्वागत है श्रीमान जी। बाबू सिंह ढिल्लो जी गिदड़वा तो बोल रहे हो, की हाल चाल ने? किथे बैठे प्रोग्राम सुन रहे हो? आवाज वधिया आ रही है, हवा चल रही है, किथे बैठे हो? अच्छा, इथे नहीं लग रही हवा। अच्छा, खेतां च बैठे हो है? चलो वधिया गल है जी, जिंदगी दा आनंद माण दे रहो है ना जी। चलो खुशी दी गल है, कदे सानू भी सदो, असी भी आईए ते खेतां दी सैर करके जाइए जी तुहाडे नाल जी। अपनी अपनी फरमाइश दसो बाबू सिंह जी। दीदार संधु दा की सुनना जी? दीदार संधु दा फोन कर ली, शुक्रिया जनाब, पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक गीत।

0: जी हाँ श्रोतियों, तुहाडे इस रेडियो ते चल रहा है प्रोग्राम शाम सुहानी, ते वेखदे हां किसने डायल किया है 0164 2240 331। हैलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार,
1: नमस्कार जी। भाई जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल, अपना नाम ते ग्रां दसो।
1: हां जी, मेरा नाम आत्मा सिंह मिस्त्री, फत्ता मलुका, जिला मानसा जी।
0: आत्मा सिंह जी, की हाल चाल ने?
1: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर जी। बहुत चिर बाद फोन लगे जी।
0: चलो, बहुत बहुत मुबारक, फिर तो दिन बन गया है ना।
1: हाँ जी, बहुत बहुत चिर बाद फोन लगे।
0: जिन्हें कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: कोशिश करते रहो, मंजिला जरूर फतेह करोगे, हर मंजिल तुहाडे चरणा च होवेगी।
1: हाँ जी, हाँ,
0: दिल नहीं छड़ना है ना,
1: बहुत
0: अपना मनोबल उच्चा रखो।
1: हाँ जी,
0: ते कॉल जरूर लगती है, अपनी फरमाई दसो
1: अपनी गुरदास मान दस आज रोटी
0: जी।
1: अकेली खा गई।
0: हाँ, फोन कर ली, शुक्रिया जनाब, पेश है
1: थैंक
0: तुहाडी
1: यू,
0: फरमाइश ते।
1: थैंक यू।
0: गुरदास मान की आवाज चेकी।

0: दरमियानी तो भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अज फिर तो पठानकोट अमृतसर फतेहगढ़ साहब तेज दे नेड़े इलाकियां तेज मीह पिया। इधर जलंधर समेत कई जिलों च सवेर तो बदलवाई बनी हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर ते लद्दाख के कुछ हिस्सों विच भी भारी मीह पैण की पेशीनगोई की है। स्क्वैश विच सात भारतीय खिलाड़ी कनेडा विच विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अगले राउंड विच पहुंच गए ने। भारत ने चैंपियनशिप च अपनी मुहिम की शानदार शुरुआत की थी। महिला वर्ग में चोटी की खिडारन अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की लीली विल्सन नू 11-2 11-1 11-3 नाल हराया। सानवी ने नीदरलैंड की एल्के मोसल नू, अनिका दुबे ने जापान की अन्ना कुवाहारा ते रुद्र सिंह ने नाइजीरिया की खादिजा अब्दुल रहीम नू हरा के अगले राउंड विच अपनी थां बनाई है। मर्दां दे वर्ग विच आर्यवीर दीवान, यूशा नसीफ अते गुरबीर सिंह भी सिंगल्स के तीजे राउंड विच पहुंच गए ने। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो। संसद के दोवां सदनां की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले समेत कई मुद्दों से विरोधी धिर वल्लों हंगामे कारण दिन भर लई मुलतवी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हरेक मुक्त व्यापार समझौते विच भारतीय किसानों के हितों नूं सब तो वध तरजीह दी गई है। देश विच नवियाउणयोग ऊर्जा समर्था इस साल 30 जून तक 288 गीगावाट तो वध हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत ते उत्तरी मैसेडोनिया ने सांझियां लोकतंत्री कदरां कीमतां दे आधार ते अपने दोस्ताना संबंधां नूं मुड़ तों मजबूत कीता है। मौसम विभाग ने अज ते कल पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच दरमियानी तों भारी बारिश होण दी पेशीनगोई कीती ते सात भारतीय खिडारी कैनेडा च विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप दे अगले राउंड विच पहुंचे। इस दे नाल ही राष्ट्र खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। राष्ट्र खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे कल सवेरे 8:30 ते। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਦਾ।
2: जी हाँ श्रोतियों, प्रोग्राम शाम सुहानी च आप जी का एक बार फिर स्वागत है। जेकर तुसी अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनना होवे तां हुणे डायल करो 0164-2240-331। देखो जी साढ़े श्रोता किन्ने सूझवान ने। जसविंदर जी, फोन की घंटी वजनी शुरू हो चुकी है, वेखदे हां किहड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो,
3: हैलो,
2: सत श्री अकाल, नमस्कार। कौन जनाब बोल रहे ने, किहड़ी जगह तो बोल रहे ने? दरोगा सिंह जी अदनिया तो बोल रहे हो? हाँ, गड्डी तो नहीं चला रहे किते? हाँ, आवाज थोड़ी गड़बड़ आ रही है, ठीक ठाक है? अच्छा, बदलबाजी तो नहीं हो रही?
3: बदलबाजी है जी, ठंड है जी, कुछ फोन मिले जी।
2: अच्छा अच्छा, चलो हल्की हल्की कणिया पईया।
3: हाँ जी पईया।
2: चलो फिर होर कणिया चाहिए ने, असीं अरदास करांगे। अपनी फरमाइश दसो दरोगा जी। ਜਨਾਬ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: जी हाँ श्रोतियो, तुसी आनंद मान रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी दा अपनी रेडियो दोस्त लवलीन सच देवा ते
3: जसविंदर कौर नाल।
2: श्रोतियो, जेकर तुसी अपनी पसंद दा कोई भी गीत सुनना होवे ता हुणे डायल करो 0164-22-40-331। फोन दी घंटी वज रही है, वेखदे हां किहड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो
4: हैलो
2: नमस्कार।
4: नमस्कार जी,
2: अपना नाम दस दियो।
4: मैं शेजा मोल पालदा तो बोलदा जी, सौ पुट्टी डोरी।
2: जगह भी दस दियो।
4: अपना बठिंडा जी।
2: अच्छा, बठिंडा तो बोल रहे हो, भागू रोड बठिंडा से बोल।
4: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
2: प्रोग्राम शाम सुहानी तुहाडा स्वागत है जी।
4: धन्यवाद जी।
2: नरेंद्र कुमार जी, की कामकार करदे हो?
4: किराने दी दुकान आई नाल दुध दा कम आई।
2: अच्छा, किराने दी दुकान है ते नाल दुध दा कम है।
4: हाँ जी हाँ जी।
2: चलो फिर मिठाई वगैरा भी रखदे हो, कोई पकौड़ियां वगैरा भी रखदे हो?
4: नहीं नहीं, छोटा काम ही है जी,
2: सिर्फ सुक्का काम है।
4: हां जी हां जी।
2: ड्राई फ्रूट तो रखदे होंगे, मेवे तो रखदे होंगे?
4: हां हां, रखदे जी।
2: कदे सानू भी सदा दियो, तुहाडी दुकान ते आईए, असीं मेवे खाईए।
4: आ जाओ जदों मर्जी आओ भी।
2: चलो जरूर आवांगे, पता सानू लग गया। अपनी फरमाइश दसो।
4: लोफर पिछे लाओ जिंद रही मान
2: आ। अच्छा जी, फोन करने लई शुक्रिया नरेंद्र जी। पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक गीत।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
3: जी।
1: आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
1: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
3: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
3: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
1: जी,
3: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
3: जी।
1: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
3: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
1: जॉन बील मेला
3: जी,
1: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र

0: ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो।
1: जी
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
1: अजीत जी ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
0: जी पूछिए पूछिए।
1: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है?
0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
1: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए बताइए।
0: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
1: अजीत जी वो तरीका था वस्तु विनिमय, यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था।
0: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
1: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
1: जी
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
1: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
1: जी
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
1: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
1: जी फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
1: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
0: तो श्रोताओं ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
1: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
0: सांगकेन।
2: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? आइए जानते हैं।
3: यमन भैया कहाँ हो भैया?
4: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
3: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भैया खुश होने की बात तो है।

0: पता है, पापा का ईमेल आया है।
1: अच्छा, क्या लिखा है?
0: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
2: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
3: वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
0: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
1: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
2: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
3: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
2: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
3: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पापा।
3: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
3: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
3: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना। हाँ, हाँ, टैक्सी हाँ, पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
2: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
3: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चौतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
3: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
3: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
3: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
0: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है।
5: थैंक यू।
1: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
5: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
3: जी,
5: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
3: बिल्कुल ठीक कहा।
5: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
3: अरे
5: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा शंखकेन का पर्व जो है।
3: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
0: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
3: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ। सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
1: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
5: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
3: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
0: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
5: थैंक यू।

0: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
1: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
0: अच्छा
2: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
1: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
0: जल उत्सव क्यों?
1: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
0: अच्छा।
1: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
0: हाँ।
1: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
0: जी।
2: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
1: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
2: तो हम भी चले?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
2: चलो चलो चलो।
3: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
0: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
4: संकेन।
3: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चाउतान जी से कहा,
2: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
0: इतने में किसी ने चाउतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
3: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चाउतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
1: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
2: अच्छा।
1: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
2: जी अंकल।
1: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
1: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
0: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
6: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को, पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
7: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार. उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग.

0: रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के

0: साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए, आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
4: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
5: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक

0: नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा, एक नई पहल, पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमरीका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला

अभी आपने किशोर कुमार और साथियों को मोहब्बत फिल्म में सुना। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की, फिल्म का नाम लवर्स।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश गुलाम फिल्म से। तर्ज बनाई है जतिन ललित ने, रचनाकार हैं समीर, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की।

गुलाम फिल्म में कुमार सानू और अलका याग्निक को सुना। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।

0: पागल।
1: दोस्तों, आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को, जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
2: जब पार्टीशन हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया। लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने। जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज़म लिखी, उस नज़म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स। और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा, जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है, या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ दो अपने बख्शी फैंस के लिए।
1: जरूर।
2: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई। इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई। रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई। दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
1: क्या बात है।
2: ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा
1: जी जी
2: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है।
1: जी, आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगता था। वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले। इसी बरस आई हिमालय की गोद में चांद।

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रही थी। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

0: आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर्स डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
0: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
1: बख्शी साहब का एक गाना था एक फिल्म में, जहाँ पर विलियन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हर्मा हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए उनका, उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई और जो राजकोट साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वो वहां यूज किया, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
0: क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे एक मॉडर्न गाने में बदल दिया।
1: यस यस,
0: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं कि भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
1: हाँ, वो बख्शी साहब और जब सेटिंग चल रही थी गाने की, तो काफी वक्त निकल गया, मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्शी साहब और डायरेक्टर साहब जीवन प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तक मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, क्योंकि अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे, तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि रुको रुको, बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया आया है। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, और उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं।
0: क्या बात,
1: तो ये वहां से वो बात निकली।
0: अच्छा,
1: गाना है अपना, एक बार सुभाष भाई साहब आए थे घर पे
0: जी,
1: उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि मैंने नई फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने चले गए बख्शी साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्शी साहब ने सुभाष जी भाई साहब को कहा कि एक यार, मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्शी साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, उनके शायद फादर आ रहे थे बाहर गाँव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए। उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्शी साहब बैठे थे बाजू में और दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रस्ते में कहीं बख्शी साहब ने गाड़ी रोक दी, बोला रुक रुक रुक, कुछ लिखना है मुझे। और उन्हें एक कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरे हम सफर का, सराहा पर इस मोड़ पर कहीं तुम,
0: किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर।
1: हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरे हम सफर।
0: ओहो,
1: तो वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी के गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे हम सफर।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त हैं जिनके रिकॉर्ड की शॉप थी, अभी भी है स्वीट, तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले और वहां पर एक स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल, स्कूल के स्कूल से आगे आ रहे थे एसवी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी, तो वहीं

0: बक्सिया ने वापस गाड़ी रोक दी, बोला रुक रुक रुक, मुझे कुछ लिखना है। तो उन्होंने कुछ अपना, उनके पास एक, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 5x5 सीरियल पैकेट के पीछे लिख देते थे लाइनें, मुखरे मंत्रे जो भी था। तो ये पेपर, तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर हैं तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। 3 4 6 महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्शी साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल के लिए, चलते को नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली 2 हफ्ते में। वो चले गए फिल्म देखने, और जब वो गाना आया तो बख्शी साहब ने बोला, याद है तेरे को, हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था? तूने कहा था कि यार रूप पाया इस लड़की ने। तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी, और मैंने ये गाना लिखा था तब कि रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए।
1: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
0: हजारों घटनाएं हैं, 2 घटनाएं है जो हैं। एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्शी साहब, 68-64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे। जब जब फूल गले रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड। तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना। काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्शी डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे, 2 बजे आते थे, 3, कभी 3 बजे आते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी उनकी एक आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, जैसे माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती हाथ से, हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके। तो वो हमेशा रात को आके, ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माई ब्रदर, टू माई सिस्टर। लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था, जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिल्म नहीं करते थे, वो छोटा कोई लोरी सुनाना या कुछ। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा, फिर जब आते थे, अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे, मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था, उनकी
1: क्या
0: उनकी
1: बात है,
0: लोरियों का। दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था, तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने। तो मेरे डैडी ने कहा कि तेको पता है इस अंडे का भाव क्या है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा 50 पैसे 25 पैसे जो भी होगा, 1 रुपया होगा, आई डोंट नो। तो इस की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले। तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माई फादर वॉज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर्स ऑफ करियर इन द बिगनिंग।
1: बिल्कुल
0: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में। तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तो तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना,
1: क्या बात है,
0: भले वो एक अंडा ही हो।
1: क्या बात है,
0: इसी बात
1: बात
0: मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया,
1: जी।
0: और वो मेरे डैडी की पसंद की नहीं थी। तो मेरे डैडी ने कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वव नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने प्रेताप में गाना लिखा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव के लिए कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी, अच्छी गाने लिखे, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरी वक्त मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है। तो
1: जी
0: मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है, काम में और शौक में फर्क होता है, वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता, अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है।
1: क्या बात है। अच्छा, अब
0: एंड
1: मुझे
0: हाँ
1: बताइए
0: जी,
1: कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर।
0: गाने तो बहुत है, हजार है, जैसे कि क्या होता है हर गाना आपको एक, जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको कोई गाना अच्छा लगता है।
1: मैं समझ
0: जैसे
1: सकता
0: मुझे
1: हूं।
0: याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल से चला गया था, विद अ गर्ल, कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था। तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था। तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा था क्या हो गया तेरे को, तू 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, कुछ लफड़ा वफड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ? तो मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत
1: क्या बात है,
0: चाहेंगे हम अगर तू संग है,
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात है,
0: काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं, तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए। तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: क्या
0: और ये
1: बात
0: ऐसा
1: है।
0: ही गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी के में काम आ सकता है, और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर

0: अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो।
1: क्या बात है, क्या
0: क्योंकि
1: बात है।
0: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं लोग और कोई साथ नहीं देता। तो बख्श साहब ने ये कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा,
1: क्या बात
0: दुनिया
1: है,
0: अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे,
1: क्या बात है
0: लेकिन पहले खुद को याद करो,
1: जी।
0: किसी और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो। तो
1: वाह,
0: ये लाइन, आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है। मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए।
1: जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बख्शी साहब की याद का दिन, और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया।

0: किसी का। आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
1: सुनो कहो, कहा सुना
2: कुछ हुआ क्या
1: अभी तो नहीं।

0: फिल्मी दुनिया के तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया, और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा, और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहां से आनंद बख्शी के गाने नहीं बजते होंगे।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा।

फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन का

बख्शी साहब 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने हजारों गाने, और उन गानों का गाने सुनने वाली जनता से अभूतपूर्व लगाव।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार आनंद बख्शी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। बिसरता नहीं वो वक्त, बिसरता नहीं वो चेहरा, भूलती नहीं वो आंखें जिनमें थी मोहब्बत की नदी। उठाई उन्होंने जो पलकें तो धूसर बादल आसमानी हो गए। कहा उन्होंने जब कुछ तो पहाड़ों पर उतर आई नरम धूप। जब एक दूसरे की नजरें मिली तो सैकड़ों फूल एक साथ खिल गए। चांद की परछाई ने धरती को रोशन कर दिया।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। कहीं टूट न जाए इंतजार की माला, कहीं रह न जाए इंतजार अधूरा। ओ चांद, कहना उनसे कोई है जो बाट जोहता है, न जाने कितने प्यार करने वालों का साझीदार रहा है ये चंद्रमा। चंद्रमा से दुनिया के न जाने कितने लोगों ने साझा किए अपने मन के भाव। ये चंद्रमा सबका संदेशा ले जाता है, चंद्रमा से कहो जाकर कहते उनसे वो सब कुछ जो कह नहीं सके होठ।

सद्या स्नाता लड़की के खुले बालों की सी खूबसूरती बिखरी थी फिजाओं में जब उसकी पदचाप मिली। वादी की सूखी पत्तियां हरिया गईं, दूर कहीं से आती झरने की आवाज, नदियों के किनारे एक दूसरे से मिलने को आतुर हो उठे। नदी पर छन छन करके गिरती चांद की रोशनी ने दो चाहने वालों के दिलों को भिगो दिया।

उसे आते ये अदा मासूम नजर उसे आते

हुणे तुसी विविध भारती दे प्रोग्राम सुन रहे सी। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण।